सुप्रभात, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: 103.3 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। ठीक 6 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं।

0: राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माही, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती
1: वंदन वार।

चिंतन। गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर दास। भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा लेखा जोखा विविध भारती से प्रसारित होने वाले आज दिन भर के कार्यक्रमों का अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस का नाच भाग 264। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला ख्याल, गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। आज तीसरा भाग। ये कार्यक्रम सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है। सुबह 7:00 भूले बिसरे की 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। अभिनेता जॉनी वॉकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुबह 9:30 पर ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में जाने माने गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का दूसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। राकेश आनंद बख्शी से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रंग तरंग दिन में 11:00। 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3:00 सखी सहेली कार्यक्रम होगा। 5 गायक मुकेश की याद में आज के मेहमान कार्यक्रम में एक विशेष पेशकश शाम 4:00। इसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बातचीत आपके इस दोस्त यूनुस खान ने की है और ये इस बातचीत का दूसरा भाग। ये कार्यक्रम कल सुबह 10:00 दोबारा सुना जा सकता है। शाम 5:00 छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। पंडित सी आर व्यास ने यह श्रृंखला पेश की है। आज तीसरा भाग प्रसारित किया जाएगा। इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग शाम 7:45 पर। इससे पहले शाम 7:00 फौजी भाइयों की जय माला।

रात 8 बजे हवा महल में आप सुनेंगे झलकी चलो शुरू हो जाओ। सतीश भार्गव ने इसे लिखा, निर्देशक अजीमुद्दीन। 8:15 पर चित्रलोक, रात 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम अभिनेता जॉनी वॉकर पर केंद्रित होगा, आज उनकी याद का दिन है। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग। आपको बता दें कि विविध भारती आप सुन सकते हैं इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर, DTH पर, न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, और इसके अलावा एलेक्सा डिवाइस पर। एलेक्सा डिवाइस पर आपको कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती नेशनल सर्विस, और बस एलेक्सा विविध भारती को प्ले करना शुरू कर देगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

एक समय श्रीराम द्वारा रचित माया के वशीभूत होकर नारद मुनि ने विवाह करना चाहा था, किंतु प्रभु ने उन्हें विवाह करने से रोक दिया। तब से ही मुनि के मन में इसका कारण जानने की उत्कंठा बनी हुई थी। जब नारद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी शंका प्रकट की, तो प्रभु ने युवती स्त्री के गुण अवगुणों की चर्चा करके उनकी शंका का समाधान किया। स्वामी के वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो उठा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। इसी संदर्भ में प्रभु ने संतों के उन लक्षणों पर प्रकाश डाला जिनके कारण वह भक्तों के वश में रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। संतजन इन छह मानसिक तथा शारीरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे संसार के दुखों और संदेहों से सर्वथा मुक्त होते हैं। दूसरों को मान देना, अभिमान न करना, धैर्यवान होना, धर्म के ज्ञान और आचरण में निपुण होना उनके गुण हैं। वैराग्य, विवेक तथा परमात्मा के तत्व का ज्ञान संतों के लक्षण हैं।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार, आज हम राग भैरव के बारे में बातचीत करेंगे। भैरव के बारे में कहना तो है बहुत, उसका अगर वादी संवादी देखा जाए तो इसके देवता और ऋषभ वादी संवादी है, लेकिन राग का जो पर्सनैलिटी है वो मध्य पे बहुत निर्भर होती है। तो मैं एक बंदिश गा रहा हूँ।

अभी इस बंदिश की जो सम है वो मध्यम पे है, निर्भर होती है, और हर एक ऐसा समझ है कि वो ऋषभ दैवत वादी संवादी होने की, लोग ऐसे कहते हैं कि ऋषभ दैवत बहुत आगे आना चाहिए, लेकिन मध्यम के बिना ये हो नहीं सकता है। भैरव, भैरव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भैरव में मध्यम।

ऐसे बहुत सारे पारंपरिक बंदिश है जिसमें हर एक बंदिश में कोई ना कोई बात ऐसी बंदिश में मिलेगी कि जिससे राग में बढ़ावा ही मिलता है उससे। अभी ये मध्यम प्रोमिनेंट जो भैरव में है वैसे दूसरों भी राग है जो कि राग गौड़ मल्लार, इसमें भी मध्यम प्रोमिनेंट है।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। आज आपने इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर संगत कर रहे थे मुकुंद राजदेव।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार। 29 जुलाई का दिन, आज का दिन याद का दिन है एक जाने माने अभिनेता का, बदरुद्दीन काजी, जो जॉनी वॉकर के नाम से जाने गए फिल्मी दुनिया में। मुंबई में बसों में कंडक्टर हुआ करते थे बदरुद्दीन काजी, और जब फिल्मी दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को खूब हंसाया। जिंदगी का एक फलसफा उस गाने के जरिए जो जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया।

भाई ये गाना आपने सुना, लैला की उंगलियां बेचूं, घर की लाज फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण की बोल थे और रवि की तर्ज थी। अगला गाना भी रवि का ही स्वरबद्ध किया हुआ है, मोहम्मद रफी ने इस गाने को लिखा, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा, मोहम्मद रफी ने गाना आशा भोसले के साथ गाया है। घर संसार फिल्म का ये गाना भी कुछ अनूठे जुमले लेकर आता है, क्योंकि जब पर्दे पर जॉनी वॉकर हूं तो लहजा मजाहिया होगा गाने का, होंठ गुलाबी गाल सुनहरे,

पांच चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला।

0: दुनिया गोल है, ऊपर से होल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से।
1: शकील बदायूनी के बोल थे रवि की तर्ज। फिल्म का नाम था चौथवीं का चांद। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन, हर 24 घंटे जाके उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार, बच के रहना, देख रहा है सब कुछ तू

चंदन फिल्म का ये गाना था, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था और मदन मोहन की तर्ज थी। आपको बता दें, सुबह 9:30 और रात 9:30 पर जॉनी वॉकर पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। आज जॉनी वॉकर के साथ साथ हम याद कर रहे हैं संगीतकार सुधीर फड़के को भी।

0: भाभी की चूड़ियां फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। पंडित नरेंद्र शर्मा के बोल थे सुधीर फड़के की तर्ज थी। और आज भले पहली तारीख ना हो, पर बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पहली तारीख वाला जो गाना है किशोर कुमार वाला, उसके संगीतकार सुधीर फड़के हैं। कबर जलालाबादी ने इसे लिखा। तो जुलाई की 29वीं तारीख को गाना पहली तारीख का।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है,

वो पैसा जरा लाना, वो पैसा जरा लाना, लाना लाना, वो पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

0: पुराने मेहरबान है, बड़े ही करीब है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक

0: एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आइए सुने हमें रही प्यारी।
1: दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। आ, आ, हो

काय को करता, तोबा काय को करता, प्यार से डरता, ऐसा रिश्ता नमक कैसा होगा।

मिर्जा सुल्तानपुरी के बोलते ओपी ने ईयर की तर्ज फिल्म का नाम था आरपार।

0: शैलेंद्र के बोल थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें सलील चौधरी की तर्ज। फिल्म का नाम था मधुमति। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अजनबी फिल्म का ये गाना था। आनंद बख्शी की बोल थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
0: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार,
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुट

0: ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिली।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है, एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है, उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और राष्ट्रमंडल खेलों में कुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: लेकिन आप तो जिंदा हैं।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।

तो आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यहीं समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए चित्रलोक।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

आइए सुनिश्चित लोक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरुओं को प्रणाम करने का दिन, उन गुरुओं को जिनसे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने आपको जिंदगी का फलसफा सिखाया, जिंदगी जीने का हुनर सिखाया, कोई कला सिखाई, उन सभी गुरुओं को नमन करने का दिन भी है। और इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है। बहुत सारी बातें करेंगे अलग अलग मुद्दों पर। इस गाने के साथ करते हैं शुरुआत। उम्मीद है आपके शहर में भी होगी बारिश और भीगे हुए दिन चल रहे होंगे। सुनिधि चौहान की आवाज, इरशाद कामिल, संदेश शांडिल्य, फिल्म का नाम चमेली।

चमेली फिल्म का ये गीत आपने सुना, और कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी खबर, और वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के मेडल आने का सिलसिला लगातार जारी है, और एक बड़ा कमाल ये हुआ है कि लंबी दूरी के धावक कुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10,000 मीटर की दौड़ में मेडल जीता है, और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। उन्होंने ये रेस 27:49 में पूरी की, 10,000 मीटर की ये दौड़। ये पहली बार है 1986 के बाद कि कोई भी अफ्रीकी खिलाड़ी टॉप 3 में जगह नहीं बना पाया, और गुलवीर सिंह ने जीता मेडल। आपको बता दें कि गुलवीर ऑस्ट्रेलिया के काई रॉबिन्सन के बाद दूसरे स्थान पर रहे हैं, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
4: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म ओंकारा की रिलीज के 20 बरस पूरे हुए। साल 2006 में 28 जुलाई को रिलीज हुई थी ये फिल्म और आज भी इसके गाने हमारे दिल के करीब।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है आज, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां।

0: जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: माई मेरी माई री
1: स्वानंद किरकिरे की आवाज।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.3 MHz पर।

0: FM 90.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। ठीक 9 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र में 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र बनाए जाएंगे और मॉनसून के एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कई कठोर दंड शामिल हैं। श्री सिंह ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयक में हर राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्य सूची की समीक्षा की। कल हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति देना था। श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच मजबूत टीम बनाने का आह्वान किया और अधिकारियों से साझा उद्देश्य की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। गुरु पूर्णिमा आज देश और प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 516 संतों और महंतों के उनके आश्रम, मठ और मंदिरों में जाकर सम्मान किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भी भेंट किया जाएगा। संतों और महंतों को सम्मान स्वरूप श्रीफल, शॉल, दुपट्टा, मिठाई और 2100 रुपए की सम्मान राशि प्रदान

0: देने के उद्देश्य से 793,84,00,000 रुपए की लागत से 21 कार्यों का शिलान्यास करेंगे तथा 268,40,00,000 रुपए की लागत के 18 कार्यों का लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: राजस्थान समान सिविल संहिता UCC के प्रारूप को लेकर उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। जयपुर में स्थित शासन सचिवालय में हुई VC के माध्यम से इस बैठक में समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने कहा कि समिति का एकमात्र उद्देश्य लैंगिक विषमताओं को दूर करना और समाज के संवेदनशील वर्गों को सामाजिक तथा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित प्रारूप में धार्मिक स्वतंत्रता, रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सभी को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। बैठक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी चर्चा हुई। आमजन से प्रारूप पर 5 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल या QR कोड के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की पहल पर राज्य वित्त पोषित प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण मोहन व्यास विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित 11 यूनिवर्सिटीज को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राजभवन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन को प्राथमिकता दिए जाने के अनुरूप विश्वविद्यालयों में ये अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पत्र के अनुसार राजस्थानी प्रदेश के बड़े भूभाग में बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है और ये राज्य की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है। विश्वविद्यालयों से कार्रवाई शुरू कर इसकी सूचना राजभवन को भेजने के लिए कहा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। ये दिन बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से सभी से बाघों के संरक्षण, प्रकृति, वन्य जीव और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष प्रयासों के नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाई माधोपुर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के का मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की एक बार फिर सक्रिय वापसी से मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं, वहीं कई स्थानों पर झमाझम बरसात का दौर जारी है। सिरोही में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। माउंट आबू में धुंध छाई हुई है और सुहावना मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सवाई माधोपुर में कल दिन भर चले बरसात के दौर से कई स्थानों पर नदी नालों में पानी की अच्छी आवक हुई। रणथंभौर वन क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद त्रिनेत्र गणेश मार्ग बाधित हो गया। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन आगामी आदेश तक बंद किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं आज से जोधपुर संभाग

0: भाग को छोड़कर बाकी सभी 6 संभागों के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शिक्षा के क्षेत्र के 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और मानसून की एक बार फिर सक्रियता से प्रदेश में मौसम खुशनुमा हुआ। आज भी 24 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएमएनसो 3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र। सवेरे के 9:10 और 10 सेकंड आइए सुनते हैं रेडियो पिंक सिटी के प्रोग्राम्स।

0: नमस्कार खम्मा घणियन, गुड गुड मॉर्निंग जयपुर। बारिश के मस्त मस्त सुबह में आपने ट्यून किया है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, आपका अपना फेवरेट रेडियो चैनल। और मैं हूँ आरजे प्रियदर्शनी विद वही आवाज़ लेकर नए अल्फाज। 29 जुलाई है, दिन भी बड़ा ही शानदार है।
1: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं। रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
2: यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या?
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
0: जी हाँ, रेडियो पिंक 100.3 FM। आज बुधवार और साथ में आज गुरु पूर्णिमा, और समय भी बड़ा ही सोना है। 9:12 और 14 सेकंड, तो पूरे 12 बजे तक चकाचक धुआंधार बातों का होगा दौर, जिसमें होगी इन्फॉर्मेशन एंटरटेनमेंट। 11 से 12 लेकर आऊँगे सुनहरी सौगात। 10:30 से 11 करेंगे कुछ फैशन और न्यू ट्रेंड्स की बात, जिसमें होंगे हमारे साथ में खास मेहमान। 10 से 10:30 लफ्ज़ों की पाठशाला। और अभी जी हाँ, अभी जानेंगे अपनी हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज वेल्थ, सो स्टे कनेक्टेड विद द रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। गुड गुड मॉर्निंग जयपुर।

0: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ के प्रायोजक हैं आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
1: धूल धुआं पोल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
2: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
1: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
2: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।
3: हेल्थ इज वेल्थ पावर्ड बाय आनंद आई हॉस्पिटल रेडियो पिंक 300.3 एफएम। कुछ तो खास है कुछ तो बात है। मैं हूँ प्रियदर्शनी। 9:16। कहते हैं सही समय पर सही जानकारी ही सबसे बड़ी दवा होती है। इसी सोच की बात करता है हेल्थ इज वेल्थ। हालांकि हम सभी जब भी दवाओं को लेने की बात आती है तो थोड़ा सा कतरा जाते हैं, थोड़ा हिचकिचाते हैं, और कभी कभी यही हिचकिचाहट लंबे लंबे इलाज हमें उसके लिए लेने पड़ जाते हैं। लेकिन आज ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिसमें बिना बड़े चीरे के कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। कैसे? जी हाँ, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर, जो कि SMS में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रगति जी।
4: धन्यवाद मैम।
3: कैसी हैं आप?
4: बस मैं बढ़िया, आप बताएं।
3: जी बस आपको देख लिया और भी अच्छा लगने लग गया। हालांकि डॉक्टर से जब भी मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है बस ये हमसे दूर रहें और हम इनसे दूर रहें, बट आपको देख के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगा जितने भी पेशेंट्स होंगे आपके वो आपको देख कर अपने आप ही ठीक हो जाते होंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये जो एक शब्द है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट हमें समझ में आता है, रेडियोलॉजी हमें समझ में आता है, लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ये क्या है? अगर हम इसको एक लेमैन की भाषा में जानना चाहें तो क्या है ये?
4: मैम देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक मेडिकल साइंस की उभरती हुई नई ब्रांच है। हम जब भी किसी भी सर्जरी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ के इलाज के बारे में बात करते हैं, तो हम सबसे पहले एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इनवेजिवनेस। यानी हम हमारे जो भी मरीज हैं उनके शरीर में कितना बड़ा चीरा लगाएंगे, कितने ज़्यादा ऑर्गन्स के साथ में उनकी छेड़खानी होगी, कितने बड़े लेवल पर उस ऑपरेशन को किया जाएगा, ये होता है इनवेजिवनेस। तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के लिए एक सिंपल सी लाइन यूज की जाती है, मिनिमली इन्वेजिव एंड मैक्सिमली इफेक्टिव। तो हम इसमें एक बहुत ही छोटे से चीरे, या कई बार तो उस चीरे की भी जरूरत नहीं होती है, एक 2 या 3 mm का छेद करते हैं शरीर में, और उसकी सहायता से जो उपकरण है हमारे प्रोसीजर के उन्हें शरीर के अंदर भेजते हैं। उसके बाद जो इमेजिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI या फ्लोरोस्कोपी, इनकी सहायता से हम उसे एकदम जो टारगेट है हमारा उस तक पहुंचाते हैं और वहां पर ही इलाज कर देते हैं उसका। तो पूरे शरीर के ऊपर जो है उसका पूरे शरीर पर असर आने की जगह सिर्फ उस टारगेट पर उसका असर आता है।
3: यानी कि बड़ा चीरा, जो मैंने भी स्टार्टिंग में भी कहा, मैंने इसको पढ़ा भी था तो मुझे यही समझ में आया कि अच्छा बड़ा चीरा नहीं लगता है, बाकी मुझे लगा था कि आपसे और ज्यादा समझूंगी। तो अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जो रेडियोलॉजी का काम होता है कि एक्सरे रिपोर्ट पढ़ ली या MRI रिपोर्ट पढ़ ली, बस इतना ही है। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट वो बिल्कुल ही अलग हैं, अलहदा काम होता है उनका। तो एग्जैक्टली हम ये जानना चाहते हैं, अभी आपने वैसे तो बताया, लेकिन एज अ रेडियोलॉजिस्ट, एज अ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपका क्या काम होता है और किस तरह का एग्जैक्टली प्रोसेस होता है, वो हम डिटेल में जानना चाह रहे हैं।
4: मैम देखिए, जो हम लोग सबसे पहले MBBS का कोर्स करते हैं, उसके बाद में रेडियोलॉजी के लिए हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। उस रेडियोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हम लोग अलग से एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो हमने रेडियोलॉजिस्ट का काम सीखा, हमने पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना सीखा। डायग्नोसिस यानी निदान करना, मतलब हमें बीमारी का ढूंढना है, हमें उस बीमारी का पता लगाना है। हम एक्सरे, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब जांचें इस्तेमाल करके बीमारी ढूंढते हैं। अब जो इंसान उस बीमारी को ढूंढ रहा है वो इंसान उस बीमारी का इलाज भी कर सके, बहुत ही सूक्ष्म तकनीकों से उसका इलाज भी कर सके, वो काम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का।
3: तो क्या ये कहा जा सकता है कि रेडियोलॉजिस्ट यानी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो सिर्फ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि सर्जन का भी काम करते हैं, ऐसा?
4: जी, मतलब वो एक तरह से सर्जन, मिनिमली इन्वेजिव सर्जन हो जाते हैं।
3: जी जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इनकी मदद से क्या सारी बीमारियां, यानी कि मैं वो जानना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, या तो सारी हैं या कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं या स्पेसिफिक ऐसे कोई सर्जरी है जो हो सकती है?
4: देखिए, जो मेडिकल साइंस है वो हर रोज इवॉल्व होती है, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो पहले जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी थी उसमें बहुत ही छोटी छोटी बीमारियां जो थी उनका इलाज संभव था, लेकिन आज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारी जो जानकारी है बीमारियों के बारे में, उनके इलाजों के बारे में, जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जा रही है, हम और ज्यादा बीमारियों का इसमें निदान और इलाज करने लगे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर बीमारी हम सही कर सकते हैं, पर हम लोग काफी हद तक कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और कई बीमारियों के इलाज में जो सर्जन हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं। जैसे उन्हें कोई ऑपरेशन करना है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा है, तो हम उस अंग की ब्लीडिंग, उस अंग की जो ब्लड सप्लाई है उसे पहले ही कम कर देते हैं ताकि उन्हें सर्जरी में ब्लीडिंग और भी कम मिले मरीज में। तो जो अलग अलग हैं इसके अंदर
3: मतलब इस तरह की रहती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपसे चल रही हैं, बातें जारी रहेंगी। यहाँ लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उस ब्रेक के पार हमारे साथ में है डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर, रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम द एसएमएस। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, स्टे ट्यून्ड।

0: बातें तुम्हारी मेरी बातें जी हाँ, फिलहाल यहाँ पे बातें चल रही हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर से। आप सुन रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ पावर्ड बाय आनंद आई हॉस्पिटल। मैं हूँ प्रियदर्शनी। तो मैम, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर। हमारी बात चल रही थी कि किस तरह किन किन बीमारियों का इलाज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से संभव है। तो अगर हम बीमारियों की बात करें, स्पेसिफिक बीमारियों की, तो कौन से हम बीमारियों को पॉइंट आउट कर सकते हैं?
1: हम हमारे पूरे शरीर का देखते हैं। हम सबसे पहले हम पूरे शरीर में हार्ट को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर में जहाँ पर भी खून की नसें जा रही हैं वहाँ का हम इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं।
0: ठीक है।
1: ब्रेन में एक जो कंडीशन होती है स्ट्रोक, जिसे लकवा बोला जाता है, तो स्ट्रोक दो तरह से हो सकता है, या तो खून का थक्का जमने की वजह से या खून बह जाने की कारण।
0: जी।
1: तो जो खून का थक्का जमता है जिसे हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटे से हाथ में या पैर में कहीं पर भी एक छोटी सी, जैसा हमारा कैनुला लगता है उस तरह के कोई एक सुई जैसा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन की नसों तक जाते हैं, वहाँ से उस क्लॉट को बाहर निकाल लाते हैं।
0: जी।
1: इसी तरह से जो हमने बात की खून बह जाना, उसमें क्या होता है कि जैसे खून के जो खून के ना जैसे फोड़ा बोल दें हम, एन्यूरिज्म बोलते हैं जिसे हम लोग, उस वो फट करके उसकी वजह से खून बह गया अगर, तो हम लोग उस तक पहुंच करके वहाँ पे कॉयल्स या कुछ आजकल कुछ स्टेंट्स आते हैं उन्हें डाल करके हम उस खून का बहना रोक सकते हैं। ऑन टेबल पेशेंट का इम्प्रूवमेंट हमें दिखाई देता है स्ट्रोक के मामलों में। उसके बाद में हम जैसे आंख पर आते हैं, आंख के अंदर बच्चों में कैंसर की कंडीशन होती है, रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं जिसे, तो उस रेटिनोब्लास्टोमा का टारगेटेड ट्रीटमेंट, उस रेटिनोब्लास्टोमा में हम जा करके उसको वहीं पे ही उसकी जो खून की सप्लाई है उसे बंद करके वहीं पे ही उसको दवाई देकर उसे सही कर देना। इसके अलावा जो जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर एक नॉन कैंसरस एक गठान होती है जिसे हम गॉइटर बोलते हैं, एक बड़ी सी गठान हो जाती है। उसके लिए पहले जो ट्रीटमेंट होता था, पूरा चीरा लगाया जाएगा, पूरी आधी थायराइड निकाल दी जाएगी उस गठान का इलाज करने के लिए, एक छोटी सी सुई का इस्तेमाल करते हैं और उस गठान को जला देते हैं। ये सब कुछ जो है हम लोग थायराइड के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे टीबी के मरीजों में बहुत ज्यादा खांसी में खून निकलता है जिसे हम लोग ब्रोंकियल आर्टरी से ब्लीड बोलते हैं, उसको एक छोटे से छेद की सहायता से जैसे मैंने बताया हाथ से या पैर से जाकर के उसे बंद किया जा सकता है। तो जो पेशेंट्स को मतलब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट एकदम ही अनस्टेबल हो जाते हैं, उनका इलाज भी इस तरह से किया जा सकता है। डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनके हाथों में फिस्टुला बने होते हैं, फिस्टुला बंद होते रहते हैं, उन फिस्टुलास को खोलना जिसे एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। हाइपरटेंशन के मरीज जिनका बीपी बढ़ रहा है, उनका एक बहुत ही कॉमन कारण है रीनल आर्टरी का बंद हो जाना, उसको खोला जा सकता है। महिलाओं में जो हम लोग एक पढ़ते हैं रसौली बोलते हैं जिसे, फाइब्रॉइड्स, पहले इसका इलाज था जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका पहले इलाज था पूरा का पूरा बच्चेदानी को निकालना। अब वही एक जैसा मैंने बताया हाथ से या पैर से एक छोटी सी सुई की सहायता से उस रसौली की खून की सप्लाई हम बंद कर देंगे तो वो रसौली एकदम जैसे भूखी रह जाएगी और उस वजह से वो सिकुड़ के खत्म हो जाएगी।
0: ग्रेट। यानी कि बहुत सारी बीमारियां जैसा कि आपने कवर किया है, तो बहुत सारी बीमारियां आप इनको एक छोटे से छेद से, एक सिरिंज से आप पूरा ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिसके लिए एग्जैक्टली मुझे याद है कि मैंने अपने आसपास इवन मेरी फैमिली में कई ऐसे केसेस देखे हैं जो सिर्फ इस डर से हॉस्पिटल नहीं गए या डॉक्टर को दिखाने नहीं गए कि चीरा लगाया जाएगा, कि मतलब वो एक अंग जो है वो ख़राब हो जाएगा, या यूं कहा जाए कि वो एक डर उनके अंदर रहता है। तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं आज डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर से हेल्थ इज़ वेल्थ में, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं आप, तो ये बातें जारी रहेंगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
2: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज़ वेल्थ के प्रायोजक हैं आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
3: धूल धुआं पॉल्यूशन और खराब मौसम कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल
2: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी
3: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
2: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9720977720।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Station with the best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: We rock when we are together. Hey Jaipur, saath rahe, sunte rahe. Radio Pink City 100.3 FM.
6: 9:32 हो चुके हैं। प्रियदर्शनी आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ इज वेल्थ पावर्ड बाय आनंद आय हॉस्पिटल और मेरे साथ में है SMS के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर। तो मैम अभी बात चल रही थी अलग अलग बीमारियों के बारे में, आपने बताया कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिनमें अभी चीड़ फाड़ या जिनका सर्जरी बड़ी बड़ी सर्जरी हुआ करती थी, अब एक छोटी सी सिरिंज से एक छोटे से छेद से वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जैसे पहले अगर हम बात करें तो जो पेशेंट है उसको बहुत टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता था, 2 या 3 दिन कम से कम। अब कितना समय लगता है सर्जरी या इस तरह के एक इलाज के बाद में?
7: जो हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स हैं
6: जी,
7: उनमें मैक्सिमम किसी भी मरीज को 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। कई तो ऐसे भी प्रोसीजर्स हैं जिनके अंदर मरीज को डे केयर में भर्ती किया जाता है। सुबह हमने ऑपरेशन किया, शाम तक मरीज अब आराम से घर जा सकता है। जैसे हमारे वेरिकोज वेन्स हैं, वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जो लोगों के पैरों की नसें सूज जाती हैं। उसके अंदर हम लोग बस उन नसों के अंदर वही जो कैनुला है एक प्रकार का, उसका इस्तेमाल करते हैं, लेज़र या ग्लू जो है उसकी सहायता से उन नसों को बंद करते हैं। आराम से अब दिन में कीजिए, शाम तक मरीज आराम से चलने फिरने लग जाएगा और आराम से डिस्चार्ज हो सकता है। जहाँ इसके लिए पहले सर्जरी की जाती थी, पूरे पैर में चीरा लगता, नस को खींच के बाहर निकाला जाता, मरीज को काफ़ी टाइम तक लेटा रहना पड़ेगा, मरीज को चलने फिरने हर चीज़ में परेशानी होती है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जो हम प्रोसीजर करते हैं 1 या 2 दिन इसके बाद में मरीज आराम से अपने जो दिनचर्या का काम है वो कर सकते।
6: हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि एग्जैक्टली एक ऑपरेशन के बाद में, एक सर्जरी के बाद में अपनी रूटीन लाइफ में आना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 महीना भी, कभी कभी 2 महीने भी, इसमें कितना समय लग जाता है? क्या वो यकीनन जल्द ही अपनी दिनचर्या में आ जाता होगा, फिर भी कितना, और दर्द की अगर बात करें तो वो कितना उसको सहना पड़ता है?
7: देखिए, हमारे जो अधिकतर प्रोसीजर्स हैं वो एक लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि बस उसी जगह पे सुन करके जहाँ से हमें कैनुला डालना है वहाँ से सुन करके किए जाते हैं प्रोसीजर्स। तो क्योंकि कोई लंबा जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ा, पेशेंट को काफ़ी टाइम बेहोश नहीं रहा, तो पेशेंट के कोई भी जो पेट की जो समस्याएं हैं जो आते क्योंकि रुक जाती हैं कई बार जनरल एनेस्थीसिया के बाद, तो वो सब परेशानियां मरीज के साथ में नहीं होती हैं। मरीज को ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आराम करना पड़ेगा जिसकी वजह ताकि उसको जो भी हमने कट लगाए हैं वो हील हों, उसके लिए वक्त देना पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं रहता है। तो मरीज जनरली 2 या 3 दिन बाद में डिस्चार्ज, और उसके बाद में हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी, जैसे एक प्रोसीजर होता है टिप्स, जिसके अंदर जो लिवर जिनका ख़राब होता है उनका, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा होता है नसों का पेट के अंदर, उस प्रेशर को हम डाइवर्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है ये। तो इसमें अगर हम लोग बात करें आराम की, तो इसमें भी मैक्सिमम हमें 4 या 5 दिन का आराम देना है मरीज को। उसके बाद में हमें ऐसा कोई भी वो नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट को आराम देना पड़ेगा या कुछ भी नहीं है, आराम से वो अपनी दिनचर्या में आए। जो भी प्रिकॉशंस हम बताएं मरीज को, जनरली वो प्रिकॉशंस मरीज की दिनचर्या को सुधारने के जो होते हैं वही होते हैं। प्रोसीजर से रिलेटेड ज़्यादा प्रिकॉशंस भी ऐसे नहीं रहते हैं, तो उसके बाद में आराम से मरीज अपनी दिनचर्या चला सकते हैं।
6: जी, बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं। किस तरह से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो अपने आप में एक नायाब काम कर रही है, एक मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति लेकर आ रही है। तो लिसनर्स, जो आप हमें सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर भी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं, तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं आप डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर जी से, जो कि आज हमारे साथ में है, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, और नंबर डायल कर सकते हैं आप 2200 800, यानी कि 2200 800, फोन लाइंस ओपन है। तो प्रगति जी, बात चल रही थी कि इस तरह की बीमारियों में कितना समय लगता है, यानी हम ही मान के चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, यानी हफ्ते भर में एक पेशेंट जो है जिसका अभी इलाज हुआ है वो अपने रूटीन लाइफ में, चाहे वो जॉब कर रहा है या वो किसी भी तरह का काम कर रहा है, वो आ सकता है, एक सामान्य ज़िंदगी जी सकता है।
7: जी
6: जी, तो अगर हम बात करें, बहुत सारी बीमारियों की बात करी, कैंसर है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कहा जाता है लाइलाज है, या फिर अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल है, और इस शब्द से, इस बीमारी से हर कोई डरा हुआ है। क्या इसका इलाज भी इस तरह की तकनीक से, यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से संभव है, उसमें कितना मददगार है ये?
7: हम कैंसर की बात करते हैं, किसी भी मरीज को सस्पेक्टेड है कि कैंसर है, या किसी डॉक्टर को लगा, या पेशेंट का किसी भी कारण से कोई इमेजिंग कराई, सबसे पहला है इमेजिंग कराना। किसी सोनोग्राफी में, सीटी स्कैन में हमें पता लगा कि मरीज को कैंसर हो सकता है, सबसे पहले है कि उस कैंसर का जो तरीका है, कैंसर भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कौन से तरीके का कैंसर है वो पता लगाना, वो सबसे पहला स्टेप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के पास आता है। हम लोग उस जो टिश्यू है उसकी बायोप्सी लेते हैं या FNAC लेते हैं, यानी उससे एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। सबसे पहले तो इसी के अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का, मैं आपको बताऊं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है
6: जी।
7: कि पहले जो है उस गठान का टुकड़ा लेने के लिए भी पेशेंट को खोलना पड़ता, उस गठान तक पहुंच के उसका टुकड़ा निकालना पड़ता। आजकल हमारे पास एक, जैसे हमारे को इंजेक्शन लगता है, उतनी ही पतली सुई से हम लोग उसका टुकड़ा लेते हैं, सोनोग्राफी में या सीटी स्कैन में देख करके हम उसका टुकड़ा ले सकते हैं
6: जी।
7: तो हम इससे उस कैंसर का तरीका, कारण पता लगा सकते हैं। सबसे पहले तो उसका डायग्नोसिस होगा
6: जी।
7: उसके बाद में जैसे कई सारे कैंसर हैं, जैसे लिवर के कैंसर है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, कुछ प्रकार के कोलेंजियो कार्सिनोमा है, इनका इलाज जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सहायता से बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जैसे कोई छोटा ट्यूमर है, हम लोग ट्यूमर का साइज देखते हैं, पेशेंट की क्या कंडीशन है वो कंडीशन देखते हैं, उस हिसाब से या तो उस ट्यूमर को एक बस

0: उनकी स्किन से एक सुई डाल करके उस ट्यूमर को हम जला सकते हैं, जिसको माइक्रोवेव एब्लेशन या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इन तरीकों की सहायता से जला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका आता है कि जो भी वो ट्यूमर है उसकी नसों को बंद करके हम वहीं पे ही कीमोथेरेपी दे दें, क्योंकि जब हमने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि मरीजों को जो कीमोथेरेपी दी जाती है पूरे शरीर में लगती है, वो मरीज बहुत ही थका हुआ, बहुत बीमार रह जाता है। तो जो ये है, हम लोग जिसको टेस बोलते हैं, इस प्रक्रिया में हम खून की जो नसें उस ट्यूमर को सप्लाई कर रही हैं, उस ट्यूमर तक जाके वहीं पे कीमोथेरेपी दे देते हैं। तो उस कीमोथेरेपी को जहाँ काम करना है उसे वहीं पहुँचा देंगे, तो पूरे शरीर पे उसका असर नहीं आएगा, उस ट्यूमर पे ही असर करती है। इसी तरह से रेडियो जो एब्लेशन वाले जो हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे यट्रियम होता है जो इसको जलाने के लिए, वैसे ही ट्यूमर को जलाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम टेयर प्रोसीजर बोलते हैं। इनसे हम लोग लिवर कैंसर्स में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। इसी प्रकार कुछ किडनी के ट्यूमर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे कैंसर के पेशेंट्स में, क्योंकि जो भी ट्यूमर होता है कहीं पे भी हो, जैसे जीभ का हो, मुंह का हो, पेट का हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे क्या है, क्योंकि उनके खून की नसें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो पतली भी होती हैं, तो उनके खून बहने का रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं
1: जी।
0: तो हम जिन पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है उनको, क्योंकि अगर वो ऑपरेबल भी नहीं है, वो पेशेंट को ऑपरेट करेंगे तो वो और ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब होगी, तो हम उस जगह पे बहते हुए खून को रोक देंगे। वैसे ही एक छोटे से कैनुला की सहायता से खून बहना भी उन मरीजों का रोक सकते हैं। इसी प्रकार जो लिवर कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर पित्त इकट्ठा होता रहता है, जो पेशेंट थोड़ी लेट स्टेज में हो जाते हैं, पित्त इकट्ठा होता रहता है, उनका पीलिया बढ़ता रहता है, उस टाइम पे भी वो पेशेंट एकदम बहुत ही ख़राब कंडीशन में हो जाते हैं, उनका बुखार, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पित्त को बाहर निकालने के लिए एक PTBD टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग बाहर से एक छोटी सी ट्यूब डालते हैं और वो पित्त पूरा मरीज का बाहर आता रहता है, तो उस मरीज को आराम मिलता है। तो कैंसर के इलाज में,
1: यानी टोटल मिला के कैंसर के इलाज में जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ये अपने आप में एक नायाब तोहफा हो गई है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है और आराम से इस तकनीक से आप अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन स्टेज इनिशियल होने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर सुन रहे हैं आप हेल्थ इज वेल्थ पावर्ड बाय आनंद आय हॉस्पिटल, और हमारे साथ में है डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम SMS।
2: सिगरेट, तंबाकू, जर्दा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, फिर क्यों हम इनके नजदीक चले जाते हैं? दिल ही लगाना है तो गीत संगीत का जादू है ना,
3: कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है।
2: इंफोटेनमेंट का डोज 100.3 FM पर मिलेगा ना, तन और मन दोनों रहेंगे स्वस्थ जब आप बनेंगे रेडियो पिंक सिटी के दोस्त।
3: यारों दोस्ती बड़ी ही है।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, कुछ तो
1: बात है। बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे, बहुत सारी खास बातें हो रही हैं। आज हेल्थ इज वेल्थ में हम सुन रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर जी को, जो कि बात कर रही हैं अलग अलग बीमारियों में किस तरह से कारगर साबित हो रही है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट टेक्निक। तो एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो,
4: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएं।
4: मैं सुशीला दत्ता बोल रही हूँ, बनीपाक से।
1: जी सुशीला जी, क्या सवाल है आपका?
4: मेरा सवाल, अभी मैम ने वेरिकोज वेंस का जिक्र किया
1: जी,
4: तो मेरा अभी 20 दिन पहले लेजर से ट्रीटमेंट हुआ है उसका, वेरिकोज का
1: जी।
4: लेकिन अभी मैंने गुड़गांव में करवाया, वो डॉक्टर साहब अभी फोन ही नहीं उठाते और नहीं उनका असिस्टेंट उठा रहा है कोई, तो मुझे थोड़ा थाई में दर्द है और वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्टॉकिंग्स कब तक पहनने हैं?
1: Stockings
4: मेरे हाथों में गठिया है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल से पहना जाता है। और दूसरा, और मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या प्रिकॉशन लेने हैं?
1: जी प्रगति जी।
0: जी मैम, जैसा आपने बताया कि आपका भी कुछ दिन पहले ही वेरिकोज वेन का लेजर से ऑपरेशन हुआ है, तो जो आपके स्टॉकिंग्स की जो है कि आपको स्टॉकिंग कब तक पहननी है, तो हमें जो है कि एक बार आपने जो अपना प्रोसीजर कराया उसके बाद आपने वापस अपनी सोनोग्राफी कराई वेन्स के लिए?
4: नहीं नहीं मैम, 1.5 महीने बाद बुलाया है उन्होंने।
0: अच्छा, तो यदि आपको अभी कुछ दर्द जैसा अगर कुछ हो रहा है या कुछ परेशानी बता रही है, तो आप एक बार अपने पैरों की वापस से सोनोग्राफी कराइए, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी जो आपकी नसें हैं वो बंद हो चुकी है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वेरिकोज वेंस होते हैं तो हो सकता है कि कुछ मरीजों को दो बार सेशन करवाना पड़े, तो हमें वेंस देखनी पड़ती हैं कि कितनी वेंस बंद हो चुकी हैं, कुछ यदि बची हुई हैं उन्हें वापस से कुछ करना, जैसे एक स्क्लेरोथेरेपी या कुछ इस प्रकार की जो इलाज हैं वो करने पड़ते हैं। यदि कुछ भी परेशानी नहीं है तो आपकी स्टॉकिंग्स भी कुछ टाइम बाद में आपको बंद कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी नहीं है, आपने वापस सोनोग्राफी कराई, कुछ परेशानी नहीं आ रही है, तो आप नॉर्मली अपना जीवन जी सकते हैं।
4: थैंक यू मैम, थैंक यू
1: जी। ओके, थैंक यू सुशीला जी। तो सुशीला दत्ता जी, तो बात चल रही थी प्रगति जी कि किस तरह से कैंसर के इलाज में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो कारगर सिद्ध हो रही है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि पेशेंट्स के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें, तो क्या उनके लिए भी ये कारगर है, या उनके लिए कुछ और तकनीक या कुछ और चीज़ें, या किस तरह से उनके लिए ज़्यादा मददगार है, क्या रहता है?
0: यदि हम बच्चों और बुज़ुर्गों की बात करें तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है, क्योंकि कोई ऑपरेशन हुआ उसके बाद में जो आराम करने की बात आती है वो बच्चों और बुज़ुर्गों के मामले में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि अब हमें ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चीरफाड़ नहीं हो रही है, ज़्यादा मरीज़ को परेशानी नहीं होगी, तो उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। और क्योंकि बच्चों और बुज़ुर्गों की जो बीमारियाँ हैं वो कई बार यंग एडल्ट्स के कंपैरिजन में अलग होती हैं, तो बुज़ुर्गों के लिए, जैसे जो हमने स्ट्रोक की बात की, बुज़ुर्गों में ज़्यादा आता है यंग एडल्ट्स के कंपैरिजन में, तो बुज़ुर्गों के लिए तो मतलब स्ट्रोक का ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा तोहफा है।
1: आप ये क्या बात है? एक और कॉलर हमसे जुड़ गए। हेलो
5: जी, आपको डॉक्टर साहब को प्रेम नमस्कार, प्रकाश जंगड़ बोल रहा हूँ
1: जी। नमस्कार प्रकाश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
5: मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि एक तो जैसे मान लीजिए ये अपने अभी बता रही हैं आप इंटरवेंशनल
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी
5: बोलते हैं, क्या दोनों पद्धति एक ही है? और दूसरा मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर साहब से कि जैसे अभी ये नई नई पद्धति है, क्या इसका विस्तार नहीं हुआ? जैसे अभी अभी पिछले महीने में हमने कई औरतों को सुना है कि वो अपने बच्चादानी का ऑपरेशन कराती है, पूरा का पूरा बच्चादानी निकाला जाता है, फिर इसका विस्तार कब होगा ये बताएं।
0: जी, इसका विस्तार तो काफी हो ही चुका है। आप किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में जाइए, हर जगह इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइए, हर जगह इंटरवेंशन रेडियोलॉजी का,
5: तो वो तो कहते हैं ये तो पूरा निकालना पड़ेगा ऐसे।
0: वो ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की स्टेज क्या है, तो इस बारे में भी है। और ये है कि किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में जाइए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइए। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी बीमारी का इलाज कराने जाएं, एक बार आके खुद से एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की ओपीडी में अवश्य जाएं, हर बीमारी के लिए एक बार।
5: घुटनों में दर्द होता है, क्या इसका भी इलाज इसमें है?
0: जी, आप घुटने ही, क्या आप किसी भी जोड़े के दर्द की बात कीजिए मुझसे, घुटने के जोड़े, घुटने का जो दर्द है, इनके अलग अलग दर्द के जो अलग अलग कारण हैं। जैसे किसी को अगर कुछ साइनोवाइटिस हो रहा है तो हम लोग उसके अंदर इंजेक्शंस लगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड में देख करके। इसके अलावा एक नई तकनीक है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, और एक है जेनिकुलर नर्व ब्लॉक, जो कि घुटनों के अंदर जो सूजन पैदा करने वाले जो कारक हैं उन कारकों का बनना बंद करवा सकते हैं हम लोग। हमारे जो अब टखने का दर्द बात कीजिए आप, एक कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की परेशानी लोगों को बहुत कॉमन होती है हाथ में, इनकी बात कीजिए। हर जगह पर हम लोग इंजेक्शन लगा करके सोनोग्राफी में देख कर टारगेट
5: जी जी किसी को की थैली में पथरी हो जाती है
0: जी,
5: तो क्या उसका भी इलाज?
1: ये प्रकाश जांगिर जी, अभी ये जवाब अभी अभी प्रगति जी ने अपनी पिछली बात में दिया है। आप अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो शायद आपको पता हो कि अभी पित्त की थैली की बात अभी थोड़ी देर पहले ही प्रगति जी ने, यानी कि डॉक्टर साहब ने की थी। ठीक है प्रकाश जी, थैंक यू। तो प्रकाश जांगिर जी का ये सवाल था और इन्होंने बात की और उसका जवाब आपने दिया कि हॉस्पिटल्स में जाकर आपको एक बार इस तरह से विजिट करनी चाहिए, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है उनके पास में। मेरा यहाँ पर एक सवाल या एक जिज्ञासा आ रही है प्रगति जी, कि क्या ये जो सुविधा है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ये जो तकनीक है, ये जो क्या हर हॉस्पिटल में है या इसके लिए कोई स्पेशल केंद्र सेंटर्स बने हुए हैं?
0: मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को एक पूरा एक्सरे तकनीक से देखना पड़ता है कि वो जो खून की नसें कहाँ तक पहुँच रही हैं, उनकी सहायता से हम लोग जाते हैं। तो इसके लिए जैसे हमने हार्ट के लिए कार्डियक कैथ लैब्स के बारे में सुना है, उसी प्रकार से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड कैथ लैब चाहिए होती है, ट्रेंड पीपल चाहिए होते हैं, स्टाफ भी चाहिए होता है। तो अभी ये सुविधा जनरली एक किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में जाइए
1: जी। इसके खर्चे को लेके बात करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
6: नमस्कार, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ जयपुर से।
1: प्रमोद जी, जी बताएं प्रमोद जी, क्या सवाल है आपका?
6: ये कि सर्जन और आपकी ब्रांच में क्या अंतर है, और क्या आप मतलब आपके तक पहुँचने में कोई रेफर करेगा या डायरेक्ट भी मिल सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए? जी
0: जी, सर्जन और हमारे अंदर अंतर की बात आप करने की बजाय आप ये बात कर सकते हैं कि हम लोग एक तरह से सर्जन की मदद करते हैं और कई बार सर्जनों का काम आसान करते हैं।
1: यहाँ मैं बीच में बोलना चाहूँगी प्रमोद जी आपसे कि जब हमने बातचीत अपने शुरू की थी तब सबसे पहले प्रगति जी ने यानी कि डॉक्टर साहब ने यही बात बताई थी कि ये कभी कभी जो सर्जन होते हैं उनकी हेल्प भी करते हैं। तो ये बात तो हो गई। अब आपका रहा दूसरा सवाल, तो दूसरे सवाल के लिए यकीनन मैं प्रगति जी आपसे चाहूँगी कि आप इनका जवाब दें।
0: जी, हमारे पास में मरीजों को रेफर भी किया जाता है और इसके अलावा इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड ओपीडीज भी होती हैं जिसमें आप आकर खुद इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में मिल सकते हैं।
6: बहुत से कम लोगों को पता है कि आपके रेडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। हम छोटी छोटी प्रणाम करते हैं इस बात के लिए।
1: चलिए, थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आज हमारे साथ में है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर, जो कि एसएमएस में है अब, और हेल्थ इज वेल्थ प्रोग्राम चल रहा है। आपके भी जहन में अगर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को लेकर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप भी फ़ोन लगा सकते हैं। हमारे नंबर हैं 2280 यानी कि 2220800। तो प्रगति जी, बात चल रही थी जैसा कि अभी आपने बताया कि इसके अलग अलग एक्सपर्ट्स भी होते हैं और हॉस्पिटल के हिसाब से आप वहाँ पर इस तरह के रेडियोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं। अब बात करें खर्चे की, तो इसमें खर्चा या इसके इलाज में खर्चा कितना आता है?
0: देखिए, जो आप खर्चे की बात करें तो खर्चा, एक आप खर्चा मानते हैं प्रोसीजर का खर्चा, उसके बाद होता है कि मरीज कब तक भर्ती रहा और फिर मरीज की जो दैनिक जीवन है वो शुरू करने में उसे कितना वक्त लगा। हम इस तीनों के खर्चे को कुल मिलाकर के यदि खर्चे की बात करें तो जो सर्जरी है नॉर्मल, जो हम कन्वेंशनल सर्जरीज की बात करते हैं, उसमें प्रोसीजर का चार्ज मरीज का जनरली कम होता है, लेकिन उसके बाद मरीज को जो है अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करने में जो वक्त ज़्यादा लग जाता है और जो मरीज का भर्ती का वक्त है वो भी बढ़ जाता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जनरली प्रोसीजर का चार्ज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो अभी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं इनमें जो अभी ये जो हमारी नई योजनाएं आई हैं, आयुष्मान योजना, चिरंजीवी योजना, इन सब में क्योंकि अब गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को भी इंक्लूड कर लिया है, तो अब हमारे प्रोसीजर्स भी अधिकतर प्रोसीजर इन योजनाओं में आने लगे हैं, तब इनका खर्चा काफ़ी कम हो गया है
1: जी।
0: तो और इसके बाद जो क्योंकि मरीज को ज़्यादा टाइम हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं रहेगा, दिनचर्या शुरू करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो ओवरऑल खर्चा अब कम हो गया है
1: जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और लिसनर्स जो सुन रहे हैं जो कि आयुष्मान योजना और चिरंजीवी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और अगर अभी उसकी प्रारंभिक अवस्था में है तो आप डेफिनेटली जाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से आप अपनी बीमारी को ठीक भी करा सकते हैं। एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं प्रगति जी, यहाँ एक देख लेते हैं कौन है ये। हेलो
7: मैम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, अजय नायर बोल रहा हूँ मैम।
1: गुड मॉर्निंग अजय जी।
7: मैम मेरे एक क्वेश्चन था, लाइक मेरे लेफ्ट किडनी के ऊपर जो सेमिनल वेसिकल है उस पे एक सिस्ट है, वो सिस्ट रिमूव हो सकता है क्या मैम इंटरवेंटिव रेडियोलॉजी से?
0: सर, अगर वो सिस्ट आपको कोई परेशानी कर रहा है तो पहले तो आप उस सिस्ट का डायग्नोसिस करवाइए कि वो सिस्ट क्या है, किस कारण से है, उसके बाद इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की सहायता से उस सिस्ट का एस्पिरेशन किया जा सकता है और अगर हमें कारण पता लगा कि वो सिस्ट अगर बिनाइन है तो उसका नॉर्मल एस्पिरेशन से वो सही हो सकता है, लेकिन अगर किसी
7: बिनाइन है मैम वो,
0: तो उसका एस्पिरेशन करवा सकते हैं उस सिस्ट का, यदि वो सिस्ट आपको कोई परेशानी दे रहा है। जी
7: जी, तो एस्पिरेशन हुआ था फिर वापस उसमें पानी भर गया था,
0: तो आप उस सिस्ट में जो एस्पिरेशन हुआ आपने उसका जांच करवाया कि वो किस कारण भर रहा है?
7: आई थिंक वो सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड है वही शायद आ रहा है उसके अंदर,
1: आई थिंक। अजय जी, मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब जो कहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक बार पहले जांच जरूरी है।
0: जांच उसकी जरूरी है कि आप आई थिंक की बजाय आप एक किसी डॉक्टर से एक बार उसके बारे में मिलिए कि उसका कारण पता कराइए, उसके बाद हम आपको उसका इलाज जो है वो बता पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, चलिए थैंक यू अजय जी, होप आपके जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं प्रगति जी, कि ये ऐसा हो गया और हम खुद ही ना अपना इलाज करने लग जाते हैं कभी कभी। इवन आजकल तो गूगल से कई लोग घर बैठ के इलाज कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या उनको सजेस्ट करना चाहोगे?
0: मेरा एक ही चीज़ माननी है, जानकारी अच्छी चीज़ है पर अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती
1: exactly,
0: है
1: हाँ।
0: तो जैसे हम लोग गूगल पर जो भी चीज़ देखते हैं, हम लोग हमारी जितनी हमारी नॉलेज है हम उस हिसाब से देखते हैं, लेकिन क्योंकि एक डॉक्टर ने जो 13 साल 16 साल लगा करके पढ़ाई की है, उन्होंने कुछ अलग जाना होगा, इसीलिए वो डॉक्टर हैं।
1: और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है प्रैक्टिस की है ना,
0: प्रैक्टिस की।
1: आप एज अ प्रैक्टिशनर जितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें महारत हासिल करेंगे।
0: जी,
1: तो ये बात सही है लिसनर्स जो आप हमें सुन रहे हैं, ये होता है ना हमारे साथ भी कि थोड़ा सा बीमार हुए, थोड़ा सा ये हुआ, तो चलो यार देख लें इसमें कौन सी दवाई होती है, अच्छा इसमें क्या क्या कंटेंट है, इसमें क्या क्या ये है, ठीक है ले लिया। हम डॉक्टर के पास जाने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, तो जाइए ज़रा और एग्जैक्टली डायग्नोस होगा तभी समझ में आएगा कि हमारे शरीर में चल क्या रहा है। भैया मशीनी तो है हमारा शरीर, राइट। अच्छा प्रकृति जी, एक जहन में सवाल और आ रहा है इससे पहले कि कोई और कॉलर हमसे जुड़े। AI आज हर क्षेत्र में आ गया है, अपनी उसने हर क्षेत्र में अपनी इंटरफेरेंस दे दी है, तो क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में भी AI का कोई भूमिका है, और अगर है तो किस तरह से अपग्रेड हुआ है ये?
0: मैम AI का काम डॉक्टरों की सहायता करना है
1: जी,
0: तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस की ही बात कर लें, तो डायग्नोसिस में AI काफ़ी मदद कर रहा है, जो मरीजों की रिपोर्ट बनने में जो बहुत ज़्यादा वक्त लगता था अब AI की मदद से थोड़ा कम हो गया है वो वक्त लगना। इसके अलावा जो हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करें, हालांकि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में अभी AI बहुत ही अपनी शुरुआती दौर में ही है
1: जी, जी।
0: पर हम लोग क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि हमें कई बार जो खून की नसें ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और CT स्कैन में एक्सरे की सहायता से उन नसों को ढूंढने में, तो कुछ AI मॉडल्स हमने देखे हैं जो हमारी मदद करते हैं उन खून की नसों को आसानी से पहचानने में स्कैन्स के अंदर मरीजों के, तो ये अभी AI हालांकि इसमें बहुत ही शुरुआती दौर में है
1: जी। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो।
8: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएं।
8: मैम सुनीता जालानी बोल रही हूँ।
1: जी सुनीता जी, जी सुनीता जी,
8: मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है।
1: हाँ जी,
8: जो ये बच्चेदानी में गांठ हो जाती है और उसका आप लेजर से ऑपरेशन कर देते हैं, उसके बाद क्या दोबारा चांसेस रहते हैं?
0: जी, जो ये बच्चेदानी की गठान है ये अपने हॉर्मोन्स की वजह से बनती है, ये गठान नहीं, मतलब इसको गठान इस तरह से आप मान लीजिए कि जो यूट्रस की मसल्स हैं उनका एक रिस्पॉन्स है हमारे शरीर के हॉर्मोन्स के लिए, तो वापस से बनना, जो वो जो गठान जिसका हमने इलाज कराया वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वापस से बनना आपके शरीर के हॉर्मोन्स के लेवल पे डिपेंड करेगा, उसका तकनीक से कुछ लेना देना नहीं है, तकनीक एक बार उस गठान को ख़त्म कर सकती है।
1: जी, तो सुनीता जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। तो अभी हमारे पास में समय कम है, लेकिन जाते जाते एक सवाल ये है कि स्वस्थ रहने के लिए और गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हमारे श्रोताओं को आप कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, मेरी सबसे पहली सलाह तो यही रहेगी कि आप जो भी खाएं उसे देख करके खाएं
1: जी।
0: आप कोई भी पैकेज्ड फूड लें, कोई भी चीज़ लें, उसके पीछे उसका लेबल ज़रूर पढ़ें, उसमें शुगर सॉल्ट का कंटेंट अवश्य देखें। इसके अलावा जो रोज़ व्यायाम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपना BP शुगर इन सब की जांचें हमेशा कराते रहें। 40 साल की उम्र के बाद महिलाएं अपना एक तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और एक गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं, और इसके अलावा तनाव मुक्त जीवन जिए। मेरा एक

0: ही मानना है कि हमारे जीवन में हर चीज हमारे लिए एक समस्या है जब तक, और हम इस चक्कर में हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिस दिन स्वास्थ्य समस्या बन जाता है उस दिन बाकी सारी समस्याएं रह जाती हैं, और उस स्वास्थ्य ही रह जाता है जो हमें परेशान कर देता है।
1: जी बिल्कुल, और इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी है हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ होगी तभी हम जीवन जो है, इतना खूबसूरत सा जीवन जो कुदरत ने, ईश्वर ने हमें दिया है, वो जी पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है। जाते जाते अगर एक मंत्र देना हो तो क्या देंगे आप?
0: बस यही है कि जो भी खाएं देखकर खाएं, रोज व्यायाम करें और स्वस्थ रहें, मुस्कुराते
1: स्वस्थ
0: रहें।
1: रहें, मुस्कुराते रहें। तो रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM के लिसनर्स, आप भी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे डॉक्टर साहब के माध्यम से, डॉक्टर प्रगति गक्खड़ पाराशर जी ने। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं आप SMS से, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि हर बीमारी में किस तरह से जो रेडियोलॉजी है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, किस तरह से कारगर साबित हो रही है। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई डॉक्टर प्रगति, और इस तरह से आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। थैंक यू सो मच।
0: मुझे भी ये मंच देने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया। तो चलिए, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, और बने रहिए, सुनते रहिए।
2: आनंद आई हॉस्पिटल हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के प्रायोजक थे आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर। चश्मे को कहें बाय बाय।
3: धूल, धुआं, पोल्यूशन और खराब मौसम, कितना कुछ सहती हैं आपकी आंखें आपके लिए। रखिए अपनी आंखों का खास ख्याल विद आनंद आई हॉस्पिटल।
4: वर्ल्ड क्लास आई केयर सॉल्यूशंस बाय पायनियर्स इन ब्रिंगिंग लेसिक टेक्नोलॉजी लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी,
3: जहां फाउंडर डॉक्टर सोनू गोयल और उनकी टीम द्वारा सिर्फ 8 सेकेंड्स में स्माइल प्रो प्लस लेसिक टेक्निक से आपकी आंखों को मिलती है नई रोशनी।
4: गेट अ क्लियर विजन विद आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर, तकनीक में सबसे आगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9772097720।

0: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं। रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
1: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या?
0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, मैं हूँ आरजे प्रियदर्शनी और आप सुन रहे हैं लफ्ज़ों की पाठशाला, क्योंकि टाइम हो गया है लफ्ज़ों की पाठशाला में। शब्द की बात करें तो शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने भीतर पूरा एक एहसास समेटे रहते हैं। कोई शब्द कविता बन जाता है, कोई गज़ल की जान बन जाता है, और कोई हमारी रोज़मर्रा की भाषा में कहीं खो जाता है। तो आइए आज खेलते हैं यही वाला खेल जिसका नाम है लफ्ज़ों की पाठशाला। मैं आपको दूंगी खूबसूरत से हिंदी और उर्दू के शब्द और आपको बताना है उसका अर्थ। हमारे फ़ोन नंबर्स 2200 या हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। तो चलिए, पहला शब्द है प्रत्यंचा। हिंदी का शब्द है प्रत्यंचा। यह हमने बहुत सुना है अक्सर पौराणिक धारावाहिकों में, या अगर पुराने युद्धों की बात करें तो युद्ध का एक इतना हिंट नहीं दूंगे मैं। चलिए बताइए प्रत्यंचा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। हमारे फ़ोन नंबर 2200 या हमारे फेसबुक पेज पे चले जाइए जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।
5: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
6: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
5: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
6: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
7: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
8: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
9: आनंद आई हॉस्पिटल, हेल्थ इज वेल्थ।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
1: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
0: पापा का कहना,
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना,
3: क्या यार इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ ठूसो,
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना,
4: अम्मू मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी,
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा,
5: एक बात बताऊं यार किसी से कहेगी तो नहीं ना, पक्का पक्का ना,
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है, ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी,
6: कुछ तो खास है कुछ तो बात है।

0: पहले तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Stay tuned to 100.3 FM Radio Pink City.
2: 10:21 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रियदर्शनी और प्रोग्राम चल रहा है लफ्जों की पाठशाला। और मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, सवाल था प्रत्यंचा, शुद्ध हिंदी का शब्द है जनाब, इसको क्या कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब भेजा है, कईयों ने हमें फ़ोन किया है, कईयों ने हमें फेसबुक पेज पर दिए हैं अपने सही जवाब। तो चलिए सबसे पहले जिन्होंने FB पे जवाब दिए हैं उनके बारे में नहीं बताऊंगी, सबसे पहले बताऊंगी जिन्होंने फ़ोन लाइन पे सही जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले हमसे जुड़ी शशि बेनीवाल जी नाड़ीगा फाटक से, सुशीला दत्ता बनीपाक से और सुनीता झालानी जी, इन्होंने भी दिया है सही जवाब। फेसबुक पेज से हमसे जुड़े हैं हरीश कुमार, MD रियाज साहब, सुनीता झालानी, नरेश राज, प्रवीण चौहान, पुष्पा दिलीवाल, सुनील टांक, सुनीता सनाढ्य पांडे और प्रीति नितिन अग्रवाल, अक्की वदन और जी हाँ इतने सारे लोग जुड़े हैं हमसे। सही जवाब है धनुष की डोरी। प्रत्यंचा जितनी पीछे खींचती है तीर उतना ही दूर जाता है। जीवन भी ऐसा ही है जनाब, संघर्ष जितना बड़ा होगा ना सफलता उतनी ही ऊंची होगी। कितनी प्रेरणादायक बात है कि यही जो शब्द है यानी कि प्रत्यंचा, ये हमें सिखाता है कि पीछे हटना हमेशा हार नहीं होता है, कभी कभी वही सबसे बड़ी उड़ान की तैयारी भी होती है। आपने देखा होगा ना कि किस तरह से जो प्रत्यंचा है वो धनुष में पीछे की तरफ खिंचती है और उसके बाद फिर वो आगे थ्रो होती है, यानी कि सीधा निशाने पर जाता है तीर। और अब बारी है एक बेहद नाजुक उर्दू लफ्ज़ की, लफ्ज़ है तसव्वुर। जी हाँ, बताइए इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर एक शेर अर्ज करती हूँ, क्या पता आप समझ जाएं। कुछ यूँ है, तसव्वुर में तेरी तस्वीर यूँ सवरी रहती है, तसव्वुर में तेरी तस्वीर यूँ सवरी रहती है, हकीकत से ज़्यादा खूबसूरत यादें होती हैं। तो चलिए बता दीजिए मुझे तसव्वुर का क्या है अर्थ। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और आप हमें जवाब दे सकते हैं हमारे FM जो रेडियो की लाइंस हैं, जो हमारे फ़ोन लाइंस हैं उन पर 2200-800 यानी कि 2200-800 या फिर जा सकते हैं आप हमारे फेसबुक पेज पे जो है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। जल्दी से बताइए मुझे क्या है सही जवाब। 10:23 प्रियदर्शनी आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है लफ्जों की पाठशाला।
3: बिन पूछे मेरा नाम और पता

लाला। जी हाँ, चार कदम ही आपके साथ में पूरी ज़िंदगी चलना है जनाब। बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे। 10:27 प्रियदर्शनी आपके साथ में प्रोग्राम चल रहा है लफ्ज़ों की पाठशाला, और मैंने आपसे पूछा था तसव्वुर का क्या अर्थ है। तो फ़ोन कॉल्स पे हमसे लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन फेसबुक पेज पे हमें सही जवाब जो दिया है वो है सुहानी। इन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब। तसव्वुर का अर्थ आपको बता देती हूँ, कल्पना, यानी कि मन में किसी दृश्य या व्यक्ति की छवि बनाना होता है ना, कि वो मेरे तसव्वुर में है, वो आज तसव्वुर में ख्याल आया। अक्सर ऐसा सुना होगा, उर्दू का शब्द है, हर बड़ी कविता, हर महान चित्र या हर खोज पहले किसी ना किसी तसव्वुर में ही जन्म लेती है। आपका भी तो इश्क तसव्वुर में ही बनता है ना जनाब। चलिए, तो फिलहाल यहीं पर आज लफ्ज़ों की पाठशाला को हम विराम देंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे फैशन टॉक। बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। बने रहिएगा 12 बजे तक हमारे साथ में। मैं हूँ प्रियदर्शनी।

0: तो बारिश का मौसम, मस्त मस्त मौसम, 10:30 लीजिए, प्रस्तुत है हमारा अगला प्रोग्राम फैशन टॉक्स, जिसके प्रायोजक है जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन।
1: जयपुर तैयार हो जाइए साल की सबसे शाही और ग्लैमरस शाम के लिए। जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन प्रस्तुत करता है JJF मेट गाला, एम्पायर ऑफ स्टाइल, रेन ऑफ ग्लैमर, फैशन रॉयल्टी, शानदार लाइव परफॉर्मेंसेस, सेलिब्रिटी गेस्ट एंड एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग एट द बिलवा पैलेस जयपुर। JJF मेट गाला, जहां हर कदम बनेगा स्टाइल का नया इतिहास। JJF के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @JaipurJewelsFoundation को फॉलो करें।
0: जी हाँ, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियदर्शनी। 10:30 और 55 सेकंड हो चुके हैं। कहते हैं लोग सबसे पहले आपकी बात नहीं, आपकी पहली झलक देखते हैं, और यही पहली झलक बनाती है आपकी पहचान, और आपकी पहचान ये बन जाता है फैशन। फैशन सिर्फ ट्रेंड का नाम नहीं है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को खूबसूरती से एक्सप्रेस करने की एक आर्ट है, कला है। फैशन की दुनिया जितनी रंगीन दिखाई देती है, उतनी ही दिलचस्प भी है। हर रंग की अपनी भाषा होती है, हर कपड़े की अपनी पहचान, और हर स्टाइल के पीछे छिपी होती है एक कहानी। तो फैशन की इन्हीं कहानियों को समझेंगे इन फैशन टॉक्स विद आर एक्सपर्ट गेस्ट। सबसे पहले मैं सपना भांडिया जी आपका स्वागत करना चाहूँगी, जो MBA और सर्टिफाइड ज्वेलरी डिज़ाइनर होने के साथ साथ जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM के स्टूडियो में। साथ में है निकिता ढांडिया, पेशे से आप एक सफल अधिवक्ता हैं, साथ ही अपने पारिवारिक ज्वेलरी व्यवसाय में भी आप सक्रिय हैं। ज्वेलरी, फैशन और लाइफस्टाइल पर लेखन का भी आपको विशेष शौक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, और फैशन के इस दुनिया में, और जहाँ पे आज नए नए ट्रेंड्स स्थापित हो रहे हैं। तो अगर सपना जी आपसे बात करूं, तो आप खुद, आप दोनों ही फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, एक जाना पहचाना नाम है, नए ट्रेंड्स आप सेट करते रहते हैं, नए इवेंट भी आप करवा रहे हैं, तो इसकी इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली?
2: हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन, ये हमारी 300+ फैमिलीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हम एक टीम बनी हुई है, कोर टीम है, जिसमें अब हम रेगुलर मीटिंग्स करते रहते हैं कि हमको अपकमिंग इवेंट्स क्या करने हैं। तो अभी जैसे जो US में मेट गाला बड़ा फेमस है, मतलब एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू इट, तो हमने सोचा कि क्यों सिर्फ फैशन सिर्फ बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के लिए ही हो, क्यों ना पिंक सिटी के लोग भी इसको एक्सपीरियंस करें, हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो क्यों ना एक्सपीरियंस करें इसको। तो इसीलिए हम ये JJF मेट गाला लेके आ रहे हैं, जिसमें जो फॉर्मेट होगा वो बिल्कुल मेट गाला से इंस्पायर्ड होगा, कि उसमें सिट डाउन डिनर भी होगा, और जो लोग होंगे वो अपनी जो ड्रेसेस कोई किसी इंस्पिरेशन से होगी, जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडीज से इंस्पायर्ड होगा, तो कोई नेचर से इंस्पायर्ड होगा, इस तरह से सब अपने अपने कपड़ों में अपनी इंस्पिरेशन दिखाएंगे। प्लस जो हम इसमें एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, प्लस जो जयपुर के रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी हमारे साथ इसमें शामिल होंगे। So we are really looking forward to this event.
0: That's great. यानी कि एक शानदार इवेंट जयपुर वासियों को मिलने वाला है, एक नए ट्रेंड्स का, एक नए ग्लैमरस, एक इंडस्ट्री जो है उस तरह से जयपुराइट्स जो हैं उसको महसूस करेंगे। अगर बात करें फैशन और स्टाइल की, तो इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? निकिता जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी।
3: फैशन और स्टाइल में बहुत फ़र्क है। फैशन वो होता है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं उनके पीछे भागते हैं, बट स्टाइल होती है जो आप पे अच्छी लगती है, जो आप पहन रहे हो वो आपकी अपनी स्टाइल है, आपका क्रिएशन आपकी स्टाइल है, आपकी फीलिंग्स आपका स्टाइल है, जिनको आप अपने कपड़े के थ्रू, अपने क्लोथ्स के थ्रू लोगों को दिखा सकते हो कि आपके अंदर क्या चाहते हो, आप अपने आप को कैसा क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज़ योर स्टाइल।
0: एग्जैक्टली, और स्टाइल और फैशन में जब अर्थ समझ में आ जाता है, तब आप फैशनेबल भी हो जाते हैं और आप स्टाइलिश भी हो जाते हैं, राइट? तो अच्छा, अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग है ना सोचते हैं कि यार मुझे स्टाइलिश दिखना है, मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आजकल हर कोई इसी दौड़ में जा रहा है। क्या ब्रांडेड कपड़े पहनना या ब्रांडेड एसेसरीज लेना या महंगे एसेसरीज या कपड़े पहनना, इसी से आप स्टाइलिश हो सकते हैं, क्या ज़रूरी है इस चीज़ के लिए?
2: ब्रांडेड कपड़े ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहन के ही स्टाइलिश हो सकते हैं। आपको सबसे पहले अपना बॉडी टाइप जानना ज़रूरी है कि मेरी इस तरह की बॉडी है, मुझे उस पर क्या अच्छा लगेगा, क्या कलर टोन अच्छा लगेगा, अब समवन हु इज वेरी वेरी डार्क और वो उसके ऊपर डार्क कलर के कपड़े पहन ले, चाहे वो कितने ही ब्रांडेड हो, चाहे वो लुई वुटॉन हो, चाहे कुछ भी हो, बट वो उसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी बॉडी टाइप को पहचाने. तो उसी से ही अब जैसे कोई जो है कोई बहुत ही टॉल पर्सन है और वो एकदम स्ट्राइप्स पहन ले तो उससे वो बहुत लंबा लंबा लगेगा, या फिर कोई हेल्दी है और वो एकदम टाइट ड्रेसेस पहने तो वो उसके ऊपर से मतलब बॉडी एकदम बल्ज आउट करेगी. तो आपको अपनी बॉडी टाइप जानना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से आप कपड़े लो. और ब्रांडेड कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, अपने को तो अपने लोकल आर्टिसंस है जो अपने लोकल जयपुर के हैं या फिर इंडिया के लोग हैं उनको प्रमोट करना चाहिए.
0: एग्जैक्टली. और अगर कम बजट की बात करें, है ना, क्योंकि आपने अभी कह दिया कि लोकल को प्रमोट करिए, कम बजट की बात करें तो कम बजट में कैसे स्टाइलिश हो सकते हैं. मैं आजकल वैसे देख रही हूँ रील्स में ना अलग अलग चीज़ें जो है वो उनका एक अलग यूनिक तरीका बताया जाता है, अलग अलग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं कि आप इस तरह से साड़ी को ड्राप करेंगे या इस तरह से एसेसरीज़ को यूज़ करेंगे. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी निकिता जी कि क्या तरीका क्या होता है कि अगर आपको कम बजट में लुक्स शानदार चाहिए, स्टाइलिश चाहिए, आपको ये लगे कि यार क्या कमाल की बात है.
3: बिल्कुल, तो, कम बजट में भी हम अपने आप को स्टाइलिश दिखा सकते हैं. द थिंग इज कि आप अपने अंदर के क्रिएशन को कैसे निकाल के ला रहे हैं. ऑलवेज ब्रांडेड के पीछे भागना या महंगी एसेसरीज के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है. छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के भी आप अपने लुक को एनहेंस कर सकते हो जो आप पे सूट करती हो. बेसिकली थिंग ये है.
0: क्या बात है. तो सूट कैसे कर रही है, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या सूट कर रहा है, मिरर के सामने मैंने देख लिया बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद सूट कर रहा है, बट एक कॉमन मैन की नज़र से जब हम देखते हैं तो वो सूट नहीं कर रहा. तो ये कैसे पहचाने कोई भी पर्सनैलिटी अपने बारे में.
3: विच गिव्स यू कॉन्फिडेंस, जिसको पहन के आपको खुद को कॉन्फिडेंस आता हो वो आप पे सूट कर रही है. इट्स अपॉन यू. आपको दूसरे के नज़रिए से नहीं देखना है, आपको अपने नज़रिए से देखना है कि आप पे क्या अच्छा लग रहा है.
0: यानी सबसे पहले कि आप खुश होने चाहिए.
3: बिल्कुल.
0: किसी को पहन के, किसी भी कपड़े को या किसी भी एसेसरीज को धारण करके अगर आप खुश हैं तो यानी कि वो सही है, फिर दुनिया की परवाह छोड़ दें ऐसा कुछ.
3: बिल्कुल.
0: तो यही आपका स्टाइल है ना. अच्छा, इन दिनों में देख रही हूँ जो सैलब्स हैं, है ना, या जो भी बॉलीवुड की बात करें, वो अपना एक अलग ही स्टाइल लेकर आते हैं और वो उसमें कॉन्फिडेंट है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही पहन लिया इसने, है ना, ये अजीब सा. हम उसको अगर हमारे रूटीन में पहने तो बड़ा अजीब सा हो जाता है. जैसे कॉलेज गर्ल्स अगर वो पहने जो कि फिल्मों में या सैलब्स पहनते हैं तो वो उनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा. तो कपड़े का चुनाव करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. ये जानेंगे आपसे कि कपड़े का चुनाव करते समय क्या देखना चाहिए, क्या सबसे पहले देखना चाहिए जानेंगे. लेकिन यहाँ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग?
3: बिल्कुल,
0: है ना. तो फैशन से जुड़ा हुआ ही एक गाना है और ये बहुत ही फेमस गाना है. इसमें प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत ये रही है. हम सब ने सुना है ये वाला गाना. इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद में आगे की बात है. ये देखिए, ये फैशन का चल रहा. ऑलराइट, आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक 3.3 एफएम. फैशन टॉक चल रहा है और जिसके प्रायोजक हैं जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन.

0: जयपुर, तैयार हो जाइए साल की सबसे शाही और ग्लैमरस शाम के लिए। जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन प्रस्तुत करता है JJF मेट गाला, एम्पायर ऑफ स्टाइल, रेन ऑफ ग्लैमर, फैशन, रॉयल्टी, शानदार लाइव परफॉर्मेंसेस, सेलिब्रिटी गेस्ट एंड एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग एट द बिलवा पैलेस जयपुर। JJF मेट गाला, जहां हर कदम बनेगा स्टाइल का नया इतिहास। JJF के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @JaipurJewelsFoundation को फॉलो करें।
1: 10:41 प्रियदर्शनी आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है फैशन टॉक, जिसमें आज हमारे साथ में हैं सपना और निकिता जी, और ये दोनों ही फैशन वर्ल्ड या यूं कहा जाए ग्लैमर वर्ल्ड की जानी मानी हस्तियां हैं। तो वो बात चल रही थी कि कपड़ों का चुनाव करते समय हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, क्या फैशन, कम्फर्ट या ओकेजन?
0: कपड़ों का चुनाव करते समय सबसे फर्स्ट जो है अपने को कंफर्ट देखना चाहिए एंड ओकेशन देखना चाहिए। क्यों? अगर आप अपने आप में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो लोगों में आपकी वो जो कॉन्फिडेंस है वो दिखेगी एंड ऑटोमेटिकली आप अपने आप को फैशनेबल फील करेंगे। तो मेरे हिसाब से प्लस वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर विंटर सीजन है तो आपको उसी हिसाब से लेयरिंग पहननी होगी, लेयर्स करने पड़ेंगे, लॉन्ग जैकेट्स लेने होंगे, और अगर बारिश का मौसम है जो चिपचिपा वेदर है तो उस हिसाब से आपको ऐसे फैब्रिक पहनने पड़ेंगे, लिनन लो चाहे वैसे खादी वाला ले लो चाहे उस टाइप के कपड़े ले लो। तो उससे मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समर्स में आपको एकदम बेसिक कॉटन्स बिल्कुल उसी तरीके, वैसे प्रिंट्स भी, जैसे समर्स में आपको लाइट कलर्स लेने चाहिए, स्मॉल ब्लॉक प्रिंट्स और इसी तरह के कपड़े लेने चाहिए, जबकि विंटर्स में यू कैन गो फॉर डार्क कलर्स, तो उससे आपकी जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से कि है ना, कंफर्ट सबसे फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद में मौसम और लास्ट में कि फैशन, क्योंकि फैशन तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा।
1: जी, बहुत सही बात आपने बोली है कि सबसे पहले कंफर्ट है, उसके बाद में ओकेजन है, देन आपका फैशन आ ही जाता है। आपने मौसम की भी बात करी थी कि मौसम में किस तरह का फैब्रिक पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हम अगर लोकल की बात करें, आपने स्टार्टिंग में भी लोकल शब्द का यूज़ किया था, स्थानीय जिसको कहा जाता है, तो हमारे जयपुर की जो पहचान है, ब्लॉक प्रिंट है, लहरिया है, बांधनी है, ये पारंपरिक हमारे परिधान या पारंपरिक हमारी पहचान है, क्या ट्रेडिशनल फैशन आज भी ट्रेंड में है और इसको और कैसे ट्रेंडिंग बनाया जा सकता है?
2: बिल्कुल, ये कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। हमारा ट्रेडिशनल फैशन बरसों से चला आ रहा है, आगे भी चलेगा, और इसको आगे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हम इसको नए नए तरीके से अपने ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे लहरिया है, हम उसको केवल साड़ीज़ तक ही लिमिट नहीं रख के उससे हम ड्रेप्स बना सकते हैं, साड़ीज़ की टॉप्स बना सकते हैं, शॉर्ट्स बना सकते हैं, एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ में अपने ट्रेडिशनल उसको यूज़ कर सकते हैं, उनके कलर्स को यूज कर सकते हैं, चाहे बांधनी हो, एनीथिंग हो, वो हमेशा रहेगा। आप टाई एंड डाई पैटर्न को त्योहारों के मौसम में भी पहन सकते हैं, कभी भी पहन सकते हैं, इनफैक्ट शादियों में भी आप इनमें कढ़ाई करा के हैवी ड्रेसेस बना के इनको कंटिन्यू कर सकते हैं।
1: जी, और अगर मान लीजिए अभी आपकी बात चल रही है ट्रेडिशनल हमारे जो परिधान होते हैं, अक्सर हमारी जो मम्मियाँ होती हैं, नानियाँ, दादियाँ, उनके पास ना पुराने साड़ियाँ, लहंगे, ये सब मिलते हैं, और पुराना प्रिंट मिलता है जो शायद आजकल कम हो गया है, उनका रीयूज़ करना या उनको वापस रीडिज़ाइन करना, ये किस तरह से संभव है, जो एक आम इंसान कर सकता है, क्या कर सकता है उनके साथ में?
0: ये इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे अपनी एक सेंटिमेंट भी अटैच्ड होती है, आज अपनी मम्मी की, दादी की, नानी की जो ड्रेसेस होती है, जो साड़ियां हैं, लहंगे हैं, उसमें अपन इतने सेंटिमेंटली और इमोशनली भी अटैच्ड होते हैं कि अपन उसको गिव अवे भी नहीं कर सकते, और तो मुझे लगता है कि है ना, अपने को उसको है ना जैसे रीडिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि एक कोई दुपट्टा हुआ, उसका अपन ने केप बना लिया, काफ्तान बना लिया, या फिर शॉर्ट टॉप बनवा लिया, और जैसे साड़ीज़ हो गई उनकी, जैसे आजकल कॉर्डसेट्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो कोई बनारसी साड़ी का कॉर्डसेट बहुत ही फाइन लगता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है और बहुत ही क्लासी लगता है। तो इस तरीके से अपन साड़ीज़ के साथ में, साड़ीज़ को इनफैक्ट आजकल तो बहुत अलग अलग ड्रेप्स भी चल रहे हैं, आप साड़ी को बेल्ट के साथ में अटैच कर सकते हैं, नीचे आप पैंट्स पहनिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पेटीकोट के साथ ही साड़ी को वेयर करें, आप अपने पैंट्स पहनिए, शॉर्ट टॉप, क्रॉप टॉप्स पहन के, और साड़ी को अलग तरीके से ड्रेप करिए, केप के साथ में ड्रेप करिए, कुछ लॉन्ग जैकेट्स के साथ में भी आप उसको पहन सकते हैं। तो आप अपना जो पुराना जो है उसको पहनिए, उसके साथ में कुछ छोटा मोटा एडिशन कर लीजिए, जैसे कि उसमें हल्का सा कोई वर्क का कोई एक्स्ट्रा एडिशन लगा लिया, या कुछ एक स्टाइल स्टेटमेंट ज्वेलरी में भी आप ले सकते हैं कि है ना, कभी कभी होता है कि अपन बहुत बेसिक पहन ले और उसको अपन ज्वेलरी से एनहेंस कर दें, जो लुक होता है कि बहुत सिंपल सी एक व्हाट डू यू से सलवार सूट पहन दिया और उसमें अपन ने बहुत ही एक स्टेटमेंट ज्वेलरी पहन ली, या फिर कोई एक हैंडबैग ऐसा भाई कैरी कर लिया, या फिर पर्ल इयररिंग्स पहन लिए, कुछ ऐसा नेक पीस पहन लिया, तो उससे आप अपने जो ट्रेडिशनल लुक या फिर आपका जो पुराना मम्मी दादी वाला जो ड्रेस है उसको आप अपने मॉडर्न एक्सेसरी के साथ में उसको मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं और वो अच्छा भी लगेगा, स्टेटमेंट लुक भी देगा।
1: क्या बात है सपना जी, आपने तो मतलब पूरा एक स्टाइल बता दिया है कि अगर किसी का कोई ओकेजन आ रहा है, लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, अगर कोई ओकेजन आ रहा है, मे बी आप ही की बर्थडे है, आप ही की इंगेजमेंट, या कहीं आप किसी और इंगेजमेंट पार्टी या किसी और पार्टी में आपको जाना है, तो ये तो बड़ा ही प्यारा सा ट्रेडिशनल लुक इन्होंने बता दिया है। गो अहेड, ट्राई करिए ना, देखिए कितने खूबसूरत और कितने स्टाइलिश लगेंगे, आप जाइए ट्राई करिए। एसेसरीज़ के बारे में आपने बताया, और अगर एसेसरीज़ की बात करें तो हमारी वार्डरोब में अगर इम्पॉर्टेंट एसेसरीज़ की बात करें तो क्या होनी चाहिए जिससे हर लुक पे जो चले और हर जगह वो काम आ जाए, हर ड्रेस पर वो काम आ जाए, चाहे वेस्टर्न आउटफिट आप पहने चाहे इंडियन पहने, तो ऐसी क्या एसेसरीज़ हो सकती है?
0: एक तो पर्ल्स है, पर्ल्स है जो हमेशा सभी के साथ में चलते हैं, चाहे वो वेस्टर्न लुक हो चाहे इंडियन लुक हो। तो मुझे लगता है कि अपनी वार्डरोब में पर्ल्स की जो है, चाहे से वो स्टेटमेंट इयररिंग्स हो चाहे एक वो नेक पीस हो, पर्ल्स हमेशा रहने चाहिए।
1: लेकिन लेकिन पर्ल्स की जब भी बात आती है तो पर्ल अपने आप में पर्ल है, यानी कि बेशकीमती, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। एक आम फैमिली, एक आम कॉमन मैन, एक कोई गर्ल या कोई महिला इसको अपनी वार्डरोब में क्या कम बजट में सजा सकती है?
0: बिल्कुल, पर्ल्स की बहुत सारी वैरायटी आती है और अपन तो जो जयपुर है, जो अपने आप में एक ज्वेलर्स का ही वो एक समूह है,
1: एक पूरा हब है,
0: पूरा हब है बिल्कुल। तो पर्ल्स में ज़रूरी नहीं है कि आप मदर ऑफ पर्ल ही पहन रहे हो, कि जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसमें एक लोअर क्वालिटी की भी आती है जिसका लुक भी, और आजकल तो इतना सब कुछ ऑनलाइन भी मिलता है। तो आप बस अपना बजट दे दीजिए कि आप अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे कि भाई मेरा बजट इतने से इतने तक में है, उसमें यू विल गेट 101 ऑप्शंस।
1: हाँ, मुझे लगता है इमिटेड ज्वेलरीज ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हम सभी के लिए, है ना जी। और किस तरह की एक्सेसरीज हो सकती है? पर्ल तो हो गया,
0: हैंडबैग
1: जी,
0: एंड ज़रूरी नहीं कि आप हर कलर का हैंडबैग रखें, आप अपने साथ मतलब दो तीन हैंडबैग्स के साथ में भी, जो जैसे होता है कि एक टैन कलर हो गया, इंडिगो कलर, ब्लैक कलर, जो आपके हर आउटफिट के साथ में जाता है। तो हैंडबैग एक होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका स्टेटमेंट भी होता है, आपकी एज सच आपकी जो लुक को भी पोर्ट्रे करता है। तो हैंडबैग इज 100% विच यू शुड हैव इन योर वार्डरोब।
1: That's great. तो listeners, especially girls, handbag को अपने साथ में रखिए, और हर तरह के handbags आजकल market में available है, और हर range के है ना, हर range के available हैं, कि आपकी जो भी budget है आप budget friendly handbags भी ले सकते हैं। निकिता जी, आजकल sustainable fashion की बात जब भी हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है sustainable fashion। अगर एक कॉमन मैन की, एक ले मैन की भाषा में मैं जानना चाहूँ तो ये क्या है सस्टेनेबल फैशन, और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं?
2: सस्टेनेबल फैशन का मतलब है कि जिसे हम कहें कि एक लंबा चलने वाला फैशन, जिसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। तो लोगों को एक ऐसे क्लोथ्स फैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि आज ये फैशन में है तो मैं इसको ले लूँ, आज वो फैशन में। आपको ऐसे क्लोथ्स पहनने चाहिए या बाय करने चाहिए जिसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकें। बेसिकली अगर आप कॉटन्स ले रहे हैं तो देट विल हेल्प यू इन एवरी सीज़न, जो हर सीज़न में आपको हेल्प करेंगे। आप ऐसे कलर्स लाइए जो आपको हर सीज़न में दें। आप सस्टेनेबल के पीछे जाना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर आर्टिफिशियल क्लोथ्स के पीछे भागते तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो सस्टेनेबल फैशन के लिए हमें केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि जो फैशन चल रहा है हम उसके पीछे भागे। वी शुड गो विद लंबे समय तक हमारे जो दादी नानी के कपड़े, हमको उनको भी रिक्रिएट करना चाहिए, उनको भी यूज़ करना चाहिए, और हम भी ऐसे क्लोथ्स लें जो आगे तक चलें।
1: जी बिल्कुल, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM पर प्रोग्राम चल रहा है फैशन टॉक, और हमारे साथ में है सपना भांडिया और निकिता ढांडिया। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
3: जयपुर तैयार हो जाइए साल की सबसे शाही और ग्लैमरस शाम के लिए। जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन प्रस्तुत करता है JJF मेट गाला, एम्पायर ऑफ स्टाइल, रेन ऑफ ग्लैमर, फैशन, रॉयल्टी, शानदार लाइव परफॉर्मेंसेस, सेलिब्रिटी गेस्ट एंड एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग एट द बिलवा पैलेस जयपुर। JJF मेट गाला, जहां हर कदम बनेगा स्टाइल का नया इतिहास। JJF के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @JaipurJewelsFoundation को फॉलो करें।

0: जी हाँ, काला चश्मा तो जचता है, और बिना काले चश्मे के कैसे कोई जचता है, है? रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: आप हैं आरजे प्रियदर्शिनी के साथ, प्रियदर्शिनी के साथ ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 10:54 हो चुके हैं, फैशन टॉक चल रहा है जिसमें हमारे साथ में है सपना भांडिया और निकिता ढांडिया। इन दोनों से बात चल रही है फैशन को लेके, नए ट्रेंड्स को लेकर, ग्लैमरस लाइफ को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर। तो सपना जी, अगर हम जानना चाहें कि देखिए आने वाले समय में बहुत हमारे त्यौहार आ रहे हैं, बरसात का मौसम है, तीज आ रहा है जो कि फीमेल्स का, महिलाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर राखी भी है, जन्माष्टमी भी है, हमारा नेशनल फेस्टिवल हमारा 15 अगस्त भी है, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं जिसमें अच्छा खासा सजने संवरने का मौका मिलता है, तो किस तरह से महिलाएं, फीमेल्स या इवन पुरुष भी, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है, किस तरह से अपने आप को नया लुक दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं?
2: अभी जो ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का जो सीजन्स आने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये सब ब्राइट कलर्स का सीजन है, कि उसमें आप अच्छे बोल्ड स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, ब्राइट ब्राइट कलर्स पहने कुछ। जैसे पहले मैं फीमेल्स की बात करना चाहती हूँ, तो वो उसमें आप अपने लुक को एनहांस करने के लिए कुछ मोटी बिंदी लगा सकते हैं, बालों में गजरा लगाएं, उसके बाद में कुछ अपने आप को वैसे
0: जी, नो स्पिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मुझे लगता है कि ये एक अलग ही लुक दे देती है ना, नो स्पिन।
2: प्लस ये जो इंडिपेंडेंस डे है उसमें आप ट्राई कलर्स के ऊपर, जैसे आज तो अलग अलग जैसे आपने ब्लू जीन्स पहन ली, उसके साथ में वाइट टॉप के साथ में एक ऑरेंज कुछ बैंडाना लगा लिया, उस तरीके से आप अपने आप को लुक, बोल्ड लुक दे सकते हैं। और गणेश चतुर्थी का है तो उसमें भी ब्राइट कलर्स पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों आगे कुछ दिवाली तक अपना यही सीजन, मतलब फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो उसमें आप लहरिया हो गया, जैसे अपने जयपुर की बात करें तो लहरिया, बंधेज, और इसमें भी अलग अलग जैसे ड्रेप्स पहने, तो उससे आप अपने आप को लुक को एनहांस कर सकते हैं।
0: एग्जैक्टली, तो जयपुराइट्स अपने लुक्स को एनहांस करने के लिए हो जाइए रेडी। जो भी आ रहे हैं आने वाले समय में फेस्टिवल्स, तीज त्यौहार, उनको अपने लुक्स को एक नया, एक अलग ही अंदाज दीजिए, एक अंदाज से बयान नया लेकर आइए जनाब, और फोटोज डालिए हमारे फेसबुक पेज पर। ऑल राइट, तो ये तो बात हो गई फैशन की, नए ट्रेंड्स की। अगर अब बात करें उनकी जो फैशन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमारे आज के यंगस्टर्स, हमारे जेन जी, और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किन क्षेत्रों में है उनके लिए, फैशन डिज़ाइनिंग में, स्टाइलिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ज्वेलरी मेकअप या फैशन फोटोग्राफी, कहाँ उनको जाना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले?
3: फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए उनको, क्योंकि उनका अगर सपना है फैशन इंडस्ट्री में करियर बनाने का, तो सबसे पहले उनको अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, फैशन केवल अच्छे कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि उनके विचार, उनका अनुशासन, उनके लगातार सीखने की एक कला है। ट्रेंड्स तो बदलते रहते हैं, आज क्या है कल क्या है, उनको हमेशा खुद को अपडेट रखना होगा, खुद को अलग बनाने की कोशिश करनी होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी को अपनी ताकत बनाएं। तो बेटर है कि वो फैशन डिज़ाइनिंग में जाएं, जहां वो अपना पूरा क्रिएशन दिखा सकते हैं, अपना फैशन सेंस दिखा सकते हैं, अपने अंदर उनकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको पेपर पे वो निखार सकते हैं।
0: क्या बात है, तो आपके अंदर अगर फीलिंग्स हैं जयपुराइट्स, और अगर आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो जैसा कि निकिता जी ने कहा कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ द बेस्ट फील्ड, इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि आप वहाँ जाएं और अपने अंदर की क्रिएटिविटी को, अपने एहसासों, जज्बातों को वहाँ जाकर आप एक रूप दें, एक नया रूप दें, और जो भी आपके मॉडल हैं उनमें एक नया ही रूप, एक नए लुक को लेकर आए, क्योंकि अभी इंडस्ट्री आपकी मांग कर रही है। ऑलराइट, तो आप दोनों से जानना चाहूंगी, जाते जाते समय हो गया है हमारा, हमारे लिसनर्स को आप लास्ट में क्या मंत्र देकर जाना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देकर जाना चाहेंगे, जिससे ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, उनके लुक्स में एक नयापन आए, एक नया अंदाज लेकर आए, वो क्या हो सकता है वो मंत्र?
2: मेरे हिसाब से एक मंत्र तो ये होना चाहिए कि आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, अपने FM के थ्रू हमेशा सुनते रहें और अपडेटेड रहें कि अपने को क्या करना है। और उसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि वी शुड गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, गो फॉर स्मॉलर थिंग्स एंड निश थिंग्स विच विल क्रिएट योर इंडिविजुअलिटी, और जैसे कि हमारा जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन है, ये हम लोग रेगुलरली कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने एक फैशन शो भी किया था, उसमें हमने अलग अलग एराज से कि भाई आप 1950s की एरा से लेके आप 2020 की एरा तक में क्या फैशन में बदलाव हुआ है, उसको हमारे मेंबर्स ने शोकेस किया था। तो इस तरीके के रेगुलरली अगर जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी है अगर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करे तो उससे जो है कॉमन जनता है कनेक्टेड रहती है आज के ट्रेंड से।
0: जी जी बिल्कुल आपने सही बात की। निकिता जी आप क्या मंत्रा देके जाना चाहेंगे?
3: मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। फैशन को फॉलो करने के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। हम खुद को पहचाने फिर देखें कि आजकल जो चल रहा है वो हम पे कितना सूट करता है। तो खुद खुश रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंस हल्केगा और जो आप पहनेंगे वो आप पे

0: बहुत खिल के आएगा।
1: जी हाँ, जो आप पहनेंगे खिल के आएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे अपना विश्वास जो है वो जगा के रखिए। तो फैशन सिर्फ कपड़े पहनने की कला नहीं, बल्कि बिना कुछ कहे अपनी पहचान दुनिया तक पहुंचाने का एक सबसे खूबसूरत जरिया है। ऑलराइट, तो आप दोनों का, यानी कि निकिता ढांडिया और सपना भांडिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स के साथ में साझा की। शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच।
1: तो अभी आप सुन रहे थे फैशन टॉक।
3: जयपुर, तैयार हो जाइए साल की सबसे शाही और ग्लैमरस शाम के लिए। जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन प्रस्तुत करता है JJF मेट गाला, एम्पायर ऑफ स्टाइल, रेन ऑफ ग्लैमर, फैशन रॉयल्टी, शानदार लाइव परफॉर्मेंसेस, सेलिब्रिटी गेस्ट एंड एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग एट द बिलवा पैलेस जयपुर। JJF मेट गाला, जहाँ हर कदम बनेगा स्टाइल का नया इतिहास। JJF के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @JaipurJewelsFoundation को फॉलो करें।
1: 11 बज चुके हैं और अभी आप सुन रहे थे फैशन टॉक, जिसके प्रायोजक थे जयपुर ज्वेल्स फाउंडेशन। थोड़ी देर में लेकर आऊंगी सुनहरी सौगात।

0: युवा साथी रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम 11:08 और 49 सेकंड हो चुके हैं। प्रियदर्शनी आपके साथ में है। दिन बड़ा सोना है जी हाँ।
1: वेडनेसडे को हम काम के पिच पर जम जाते हैं, फुल फॉर्म में आकर चौके छक्के उड़ाते हैं। रेडियो पिंक सिटी करता है सब कुछ हियर। कुछ ऐसा होता है पिंक सिटी का बुधवार, म्यूजिक अंदर और टेंशन बाहर।
2: यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
0: जी हाँ, रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM 11:09 हैं और ये टाइम हो गया है सुनहरी सौगात का। सुनहरी सौगात जिसमें हम मिलवाते हैं आपको, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं हमारे बॉलीवुड से जुड़े उन सितारों की जिनका आज जन्मदिन है। तो आज किसका जन्मदिन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। चलिए बता ही देती हूँ यार, ना पेट के अंदर ऐसा कीड़ा कुल बुला रहा है कि बता दो बता दो बता दो। चलिए बताती हूँ बॉलीवुड के उस कलाकार के बारे में, ऐसे जिनकी पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों से नहीं बल्कि उनके अंदाज से है। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनकी चाल, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ ना उन्हें भीड़ से अलग बना देता है। आज का जो ये आर रहेगा 12 बजे तक का, ये उस अभिनेता को समर्पित रहेगा जिनका नाम लेते ही जहन में कई चेहरे एक साथ उभर आते हैं।

कभी रॉकी का वो मासूम सा नौजवान, कभी साजन का संवेदनशील प्रेमी, कभी खलनायक का करिश्माई किरदार, तो कभी मुन्ना भाई MBBS का दिल जीत लेने वाला वो मुन्ना डॉक्टर। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। आज जन्मदिन है हमारे संजय दत्त साहब का, हैप्पी वाला बर्थडे, इनके बारे में बातें करेंगे। फिलहाल ये रॉकी वाला जो मैंने बोला ना, रॉकी का मासूम सा वो नौजवान, वो यंग एक्टर, उसका ये गाना सुन लेते हैं लता मंगेशकर और किशोरदा की आवाज़ में, और इसमें रॉकी यानी कि हमारे संजय दत्त साहब। आए हाय क्या कमाल लगे यार, गजब, मतलब मेरा तो क्रश समझ लो। 11:10 और 56 सेकेंड, स्टे ट्यून्ड।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: रेडियो गिव्स बर्थ टू अ मिलियन इमेजेस इन अ मिलियन ब्रेन्स। So stay connected to 100.3 FM Radio Pink City. Catch the classic. Catch the classic.

9:23 रेडियो पिंक 100.3 एफएम सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में, और प्रोग्राम चल रहा है सुनहरी सौगात। तो आज बात चल रही है संजय दत्त साहब की। संजय दत्त जो कि पैदा हुए थे 29 जुलाई यानी कि आज के दिन 1959 को मुंबई में। अब ये जो अभिनय है वो इनको विरासत में मिली थी। आप सभी जानते हैं इनके पिता सुनील दत्त साहब हिंदी सिनेमा के सम्मानित अभिनेता निर्माता थे, और जो माँ थी नरगिस, क्या खूबसूरती, क्या अभिनय, यूँ कहा जाए कि अभिनय की मिसाल थी, अभिनेत्री के रूप में कमाल थी। तो ऐसी थी नरगिस, जो कि भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से गिनी जाती हैं। ऐसे घर में जन्म लिया था संजय दत्त साहब ने, तो कैमरे से कैसे दूर रह सकते थे। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि संजय दत्त साहब पहली बार बड़े पर्दे पर अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। 1972 में इनकी पहली फिल्म आई थी रेशमा और शीरा, जिसमें इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी बाल कलाकार के रूप में। दिलचस्प बात यह कि उस फिल्म का जो निर्देशन किया था वो सुनील दत्त साहब यानी कि इनके पिता ने ही किया था, लेकिन बतौर हीरो इन्होंने डेब्यू किया फिल्म रॉकी से, जिसका गाना मैंने आपको शुरुआत में ही सुनाया था। और वो गाना सुन के ना वाओ, वो शुरुआती दौर या शुरुआती जो संजय दत्त का लुक्स थे वो हर कोई, हर जिसके मुंह से ना वाओ ही निकलता है और वो क्रश हो जाता है हर जिसको उनसे। तो इस फिल्म का निर्देशन भी सुनील दत्त साहब ने किया था। ये फिल्म रिलीज होने के बाद में सुपर हिट रही, सब कुछ रही, लेकिन मैं क्यों अटकी हूँ, मैं इसलिए क्योंकि इस फिल्म को जब ये फिल्म बन रही थी तब इनकी जो मदर थी नरगिस दत्त, वो चाहती थी कि वो अपने बेटे को बड़ी स्क्रीन पर देखे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल देखिए कि इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही इनकी जो माँ थी नरगिस, जिनको कैंसर था, वो इस दुनिया को उन्हें अलविदा कहना पड़ा, और वो अपने बेटे को बड़ी स्क्रीन पर नहीं देख पाई। वो तमन्ना वो अपने साथ ही लेकर चली गई। लेकिन ये फिल्म रिलीज़ हुई और इस फिल्म को रिलीज़ होने के बाद में जो एक प्यार मिला, जो सुपरहिट हुई, उस सुपरहिट या बॉक्स ऑफिस पर जो सफल रही, उस सफलता ने संजय दत्त को युवा दिलों की धड़कन बना दिया। रातों रात वो स्टार बन गए। लंबा कद, अलग हेयर स्टाइल, दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, एक सहज अभिनय, तो युवाओं ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। हालांकि ये अध्याय उनके लिए बहुत ही भावुक अध्याय रहा, क्योंकि वो रिलीज़ के समय सिनेमा हॉल में अपनी आगे पहली सीट पर, बीच की सीट पर अपनी माँ को चाहते थे कि वो बैठी रहें, लेकिन ये उनके जीवन में हो नहीं सका। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गए थे और अपना साबित कर दिया था कि वो सिर्फ एक स्टार के बेटे नहीं हैं बल्कि वो खुद भी एक स्टार हैं। तो आगे और कैसे इनको फिल्में मिली, आगे और क्या हुआ, कैसे इन्होंने अपनी पहचान स्थापित की, कई संघर्ष आए इनके जीवन में, कई बार उतार, कई बार चढ़ाव, वैसे भी इनके जीवन में वो दौर रहा, तो कैसे इन्होंने उससे अपने आप को उबारा, कैसे वापस से बने सुपरस्टार, स्टार के कैटेगरी में आए, सारी बातें करेंगे आज संजय दत्त साहब को लेकर। बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।

0: सुनहरी सौगात, सुनहरी सौगात, पुराने बेहतरीन गानों की
1: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
0: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: रेडियो पिंगसरी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 11:42:13 हो चुके हैं, बुधवार का ये दिन है और प्रियदर्शनी आपके साथ में है। और सुनहरी सौगात में आज हम उस कलाकार की बात कर रहे हैं जिनका नाम है संजय दत्त। एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी पहचान, अगर कलाकार की बात करें तो उसकी असली पहचान तब बनती है जब वो हर तरह के किरदार में दर्शकों का दिल जीत ले। संजय दत्त साहब भी ऐसे ही अभिनेता रहे हैं। 80 के दशक के एंड में या 90s के दशक की शुरुआत की बात करें तो उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में की जिनसे ये साबित हो गया कि वो सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक बेहतरीन रोमांटिक अभिनेता भी हैं। 1991 में आई फिल्म साजन ने संजय दत्त के करियर में एक नया ही चैप्टर जोड़ दिया। इसके निर्देशक थे लॉरेंस डिसूजा और इस फिल्म में उनके साथ थे सलमान खान और माधुरी दीक्षित। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की कहानी ट्राइंगल थी, लव ट्राइंगल थी, उस पर पेस थी, लेकिन संजय दत्त ने जो अमन का किरदार निभाया था, जिस सादगी और भावुकता से अभिनय किया, उसने लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म का अभिनय जो संगीत दिया था वो नदीम श्रवण साहब ने दिया, गीत लिखे थे समीर ने। तो चलिए साजन के इस गाने को सुन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब साजन फिल्म आई थी तो उसके जो ऑडियो कैसेट की जो बिक्री हुई थी वो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। कई संगीत समीक्षक जो थे 90 के दशक के सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम में शामिल किया था उन्होंने इस ऑडियो कैसेट यानी साजन के फिल्म के गानों को। तो चलिए इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आगे की फिल्मों की बातें, आगे और संजय दत्त के बारे में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, प्रोग्राम चल रहा है सुनहरी सौगात।

0: लाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे, ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।

जी हाँ, संजय दत्त साहब ने भी जब एक बार अपनी राह पकड़ी तो बस उसी राह पे चलते रहे। बीच में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई उतार इनके जीवन में आए, लेकिन फिर इन्होंने खुद को संभाला और अपने करियर को सेट किया। संजय दत्त साहब की जो ज़िंदगी है ना, वो हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान सिर्फ उसकी सफलता से नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद दोबारा खड़े होने के हौसले से बनती है। अपने लंबे फिल्मी सफ़र में उन्होंने सड़क फिल्म की, उन्होंने कई खलनायक फिल्म की जिसमें उनके किरदार को कई लोगों ने सराहा। फिल्म ऐसी हुई कि खलनायक का जो किरदार था वो उनके जीवन पर ऐसा हुआ कि हर कोई उन्हें एक बेस्ट एक्टर के रूप में मानने लग गया। उसके बाद में मुन्ना भाई MBBS हो या फिर गोविंदा के साथ में जो उनकी जोड़ी बनी, चैप्टर टू में अधीरा के रूप में जो वो नज़र आए, KGF चैप्टर टू में, बहुत सारी फिल्में की उन्होंने और अपने किरदार को बतौर अभिनेता ये साबित किया कि वाकई में संजय दत्त साहब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक और ख़ास बात है संजय दत्त साहब की, उन्होंने समय के साथ खुद को बदलना सीखा। हर दौर में उन्होंने नए निर्देशकों, नई कहानी और नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अलग पहचान दी और साथ ही साथ अपने परिवार को भी पूरी तरह से इम्पोर्टेंस दी, उसका भी ख्याल रखा। तो चलिए, यहाँ पर खलनायक फिल्म की बात चली है तो उनका गाना आपको सुनवा देती हूँ। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं, बने रहिए, सुनते रहिए।

ऑलराइट, तो संजय दत्त साहब की बातें चल रही थी सुनहरी सौगात में, तो ऐसी बहुत सारी बातें चलेंगी और बहुत सारी एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर से हाजिर होंगे हम यहीं पर रेडियो पिंक 3.3 FM पर। फिलहाल मुझे प्रियदर्शनी को दे दीजिए इजाज़त क्योंकि समय हो गया है। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम एफएम रेडियो पिंक सिटी। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद आप जुड़ेंगे हमारी राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: जब दिन ढल जाए,
3: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
3: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
3: हम सबके भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
3: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
3: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रही हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: फिल्म वास्तव का गीत सुनिए, गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

श्रोताओं, राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। अब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 MHz पर। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा नहीं करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों की चिंताओं और उनकी मांगों के जवाब में पेश किया गया है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विधेयक को लाने के निर्णय से परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डीग जिले के पूछरी का लौठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में संतों और गुरुओं का सम्मान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के जतिपुरा स्थित श्री वन बिहारी जी मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर श्री अष्ट सखा गोविंद स्वामी जी बैठक और ऐरावत कुंड का अवलोकन कर जिला प्रशासन को इनके जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण और संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री इस समय भरतपुर के लुधावई स्थित बड़ा हनुमान मंदिर में साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद वे वैर तहसील के खेडली गुर्जर गांव पहुंचकर शिक्षा क्षेत्र के लिए 947 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। श्री शर्मा इस मौके पर मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ संरक्षण केवल एक प्रजाति की रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने और प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध को बनाए रखने से संबंधित है। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर कहा कि प्राकृतिक स्थलों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि इन्हें ऐसे स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए जहां इंसान शांति का अनुभव कर सके। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों के संरक्षण से जुड़ी पहलों के बारे में श्री यादव ने कहा कि भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,600 से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि बाघ अभयारण्यों की संख्या भी बढ़कर 58 हो गई है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। राज्य सरकार ने सभी गौशालाओं में 30 सितंबर तक गौवंश की 100% डिजिटल टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में ये निर्देश देते हुए कहा कि हर गौवंश पर विशेष चिप आधारित टैग लगाया जाएगा और उसका पूरा विवरण नए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। उन्होंने गौशालाओं को सरकारी अनुदान समय पर उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। बांसवाड़ा जिले में आज सुबह एक स्कूल वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक छात्र की मृत्यु हो गई जबकि 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक छात्र को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको जोड़ते हैं राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रमों से, जहां आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।
2: इबारत को पढ़ने के बाद आपको कुछ गीत अपने आप पता चल जाएंगे कि कुछ कुन किन गीतों को आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए, लेकिन ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड या LP और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए

ये आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम था परवाना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सबसे खास ऐसे गीतों की बारी है जो किसी कारणवश फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाई दिए पर ऑडियो हमेशा सुनाई पड़ा। जैसे एक गीत जिसका प्रिंट जल गया था लेकिन उसी फिल्म का गीत ये दिल और ये उनकी निगाहों के साए हमेशा सुनाई पड़ता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से तो लगता है कि सभी गीत एक से बढ़कर एक होंगे और ये गीत अगर आपकी लिस्ट में मिल भी जाते हैं तो कहना ही क्या। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं

कि शब्दों से जहाँ प्यार है वहीं गमों की शाम की पीड़ा भी है, इंतजार के लम्हे हैं तो सूनापन भी है। हर पलों में इन शब्दों से भावनात्मक रूप से हम जीवंत हो उठते हैं। प्रकृति की खूबसूरती भी आज बेमानी लग रही है, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं। ये सभी गीत उन्होंने लिख भेजे हैं और कहा है कि शायद इन गीतों को फिल्मों से हटाया गया था। आप लिखते हैं कि आज इबारत में बहुत ही खूबसूरत शब्दों के मोती हैं और गीत बड़े ही मनमोहक लगने वाले हैं, ऐसा आपका सोचना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म की लंबाई की वजह से कई ऐसे मशहूर गाने पर्दे पर नहीं आ सके, लेकिन उन्हें आज भी बड़े ही चाव से सुना जाता है। इस संदर्भ में कहीं और चल नाम से एक फिल्म बनी थी जिसमें एक गीत था डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा भी नहीं, बाद में ये फिल्म से जो है गाना हटा लिया गया था। इसी तरह से बहुत सारे गाने हैं जिनका जिक्र आज के इस कार्यक्रम में होने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत बिछड़ने के कुछ यादों में आने की दुनिया जहां से निराश होने की एक ऐसी फिल्म है जो कोर्ट के आदेश से हटा दी गई थी, लेकिन उसके भी कुछ गाने ऐसे थे जो बाद में काफी लोगों को पसंद आए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कब से चाह रही थी कि आज आप खास इस टॉपिक पर एक इबारत ऐसी बनाएं जहां पर इस तरह के गानों का जिक्र हो। लगता है आज आपने बिना कही मेरे कहे बगैर ही मेरे दिल की बात सुन ली है। आज इस प्रोग्राम में नई जानकारी के साथ कुछ खास गाने सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाए गए वो गीत, लेकिन उन्हें आज भी हम याद करते हैं और विभिन्न कारणों से अपने कालखंड में वो गीत नहीं बच पाए या नहीं सुनाए गए, लेकिन हमने उन गीतों को आज भी अपने दिलों में बसा रखा है। पूरी संभावना है कि इबारत के माध्यम से आज उन गीतों का जिक्र होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे गीत हैं जिनका चयन फिल्मों से निकाल दिया गया था, लेकिन उनको आज भी हम सुना करते हैं और पसंद किया करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें बेहतरीन हिंदी फिल्में हैं जिनके गाने ऑडियो और रेडियो पर रिकॉर्डिंग के बाद सुपर डुपर हिट हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई कम करने या अन्य कारणों से उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है, और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास कुछ गाने हम विविध भारती से सुनने वाले हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की थीम बहुत ही अच्छी है, ऐसे गाने सुनने को बहुत ही कम मिलते हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे कुछ गीतों का जिक्र होगा जिन्हें हमने पर्दे पर नहीं देखा लेकिन उन्हें सुना जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म महबूबा का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। क्लासिक गीत है ये, आनंद बख्शी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन है।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था महबूबा। और अब आपसे करते हैं दो सवाल हमेशा की तरह। आज का विषय क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है, और हमारे सभी श्रोताओं ने, लगभग सभी श्रोताओं ने लिख भी दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जिन्हें फिल्मों में नहीं रखा गया है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें गलत जानकारी भी मिल जाती है। बहुत सारी खोज के बाद ये पता चलेगा कि कौन से गाने फिल्मों में रखे गए और कौन से हटा लिए गए। जैसे कि फिल्म महबूबा का गीत अभी आपने सुना था, इसके लिए जब हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में खोजबीन कर रहे थे, तो पता चला था कि इस गाने को जो है फिल्म की लंबाई या कहानी की ज़रूरत के कारण, मतलब कहानी की ज़रूरत में ये गीत नहीं फिट हो रहा था, तो वहाँ थिएटर में प्रदर्शित अंतिम कट से इस फिल्म गाने को हटा लिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें किसी न किसी कारण से हटाया गया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा गीत, किसी एक गीत का नाम आपको लेना है, फिल्म का नाम, गाने के बोल आपको बताने हैं जो आपको पसंद है, और वो गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं फिल्माया गया या नहीं दिखाया गया था। वैसे हमारे श्रोताओं ने हमारे कहे बगैर भी बहुत सारे ऐसे गीतों का जिक्र कर दिया है, लेकिन आपको ये बताना है आपकी पसंद का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बेहद पसंद है, लेकिन आपको ये भी पता है कि वो गीत फिल्मांकन में या फिल्मों में नहीं दिखाया गया था। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक, और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तो आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, है ना, वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं ना कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है। किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई, उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये सावन की घटा और मोहम्मद रफ़ी और राशा भोंसले की आवाज़ें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है। कहानी का ट्रैक बदलना, अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं, एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहाँ जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, फिल्मों में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं, आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे यही हम उम्मीद करते हैं। जी, तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो दीदी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं, शुक्रिया आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से

एक है आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और एसएच बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी। इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया। पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया। उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है। तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, एसएच बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई, तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है 1972 में।

यानी 1972 में, फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10, जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वही श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा, संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था। ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशाताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे। इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला, ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार, ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया, सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है, वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए, तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोसले की आवाज़ है, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते ही गीत दिखाया गया था इस फिल्म में, लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी। ये लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत है और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर, फिल्म आया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ हैलो हैलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान ने, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना, खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मेहदी अली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है हुँ? तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल हैं बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं, जैसे कि ये।

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है।

0: जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय। जय हो बजरंग बली की जय।
1: घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे

0: किया, लेकिन आप तो जिंदा है।
1: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
2: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं, तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं। तुम भी

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यही समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त निहार शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौड़ने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता JP नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे? तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद PP चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि सिर्फ PP चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
6: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सोराइदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
7: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
8: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
9: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंतिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: मुकेश के गानों में है सादगी।
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
0: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
1: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
0: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
1: जाऊं कहां बताए दिल।
0: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
0: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु ना होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है, वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहाँ जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से इन्हें, क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं सोनाली। एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाती हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ

0: और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या हम उम्र हों, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं,
1: और व्यंजन
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है
1: और व्रत
0: प्रोग्राम।
1: के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन में हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल। और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: हाँ, मखाने की
0: और
1: खीर बनती है
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं,
1: जी।
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: आप गीत सुनते हैं,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए।
0: जी
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है,
0: जी
1: आज बाघ दिवस है। तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे, उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ,
0: जी
1: बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: जी
1: जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मज़े से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो
0: जी
1: उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे।
0: जी और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं और एक स्वस्थ बाघ आबादी समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है,
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है।
1: तो सुने वही गाना।
0: जी

आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: मग
1: हाँ तो
0: ताजी
1: भी अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बागिन तो मेरे घर में ही है, मेरी वाइफ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते
0: और एक
1: बाघिन
0: सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो दो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे
1: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है।
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी
1: बिल्कुल। और
0: है घर में
1: डर, हाँ वो
0: उपस्थित
1: डर प्रेम वाला डर होना चाहिए,
0: जी
1: क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक

0: रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसावू का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर
0: जी
1: किनारा ना,
0: जी
1: यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
0: बहुत महंगी हो
1: तो
0: जाएगी फिर
1: बहुत
0: वो
1: ज़्यादा
0: साड़ी।
1: महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो
0: हाँ, हो सकते
1: जाएंगी। तो इसलिए कि वो ना ही लगे तो अच्छा है।
0: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
1: और अमूमन इसका मूल रंग सफ़ेद या ऑफ वाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिज़ाइनों में भी ये उपलब्ध है।
0: यानी
1: और
0: आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसावू साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसावू साड़ी पहन लेती है। और कसावू साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
1: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज़ के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताज़ा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज़्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और वहाँ पर
0: पहन के पोस्ट करना।
1: पोस्ट करना, फोटो
0: हाँ।
1: डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है। अब जैसे
0: लोगों के
1: सखी
0: ज्ञान
1: से
0: में भी बढ़ोतरी होती
1: अब जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब आप जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, है ना।
0: जी,
1: तो अब क्या करें
0: अब
1: हम,
0: ब्रेक
1: एक
0: लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है, और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी ने वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं,
4: तो मन बहुत है भले ही हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है, इससे बचना चाहिए।
4: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है, इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
0: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था, कागज पर पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं, महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीज़ें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी हैं।
4: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने ज़माने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियाँ 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज़्यादा बचत करना है तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज़्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
0: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पाँव पसारे, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
4: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ,
0: कहिए।
1: कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो
1: जी
0: सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूँगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख उपाय।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके,
1: जी
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है,
1: जी
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतज़ार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतज़ार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो
1: जी
0: तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं, और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी,
1: जी
0: तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत की शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं
1: जी
0: कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है,
1: जी
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे
1: जी
0: हैं। व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने,
1: चिरौंजी
0: और
1: जी
0: बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीज़ों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी, और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताज़े दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताज़ा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे ममता
0: अरे
1: जी।
0: वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डालें। साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले, और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए, और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले, और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेंटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही हैं कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मेरे मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सोनाली, रात के कल एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है,
1: जी
0: अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर
0: कई
1: वो
0: बार
1: बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलती हैं?
1: जी बोलना ही पड़ता है
0: नहीं
1: आजकल के
0: तो
1: छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना?
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिख कर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है, और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है, इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है। अधिकार नहीं, उपहार, आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता। इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्मसम्मान सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं, और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है,
1: जी
0: आदर के लायक
1: कमाया
0: होना,
1: जाता है।
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है।
1: जी
0: आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: जी एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है, इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है, जहां आदर हो वहां रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं और
0: नहीं आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रही हैं
1: जी एक
0: तो।
1: साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता, और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया अभी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है,
1: जी
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हों या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं।
1: जी
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना,
1: हाँ
0: लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे।
1: जी और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए,
1: तो गाना सुनते हैं,
0: सुनते हैं ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन
1: पर
0: बिल्कुल
1: रुकना
0: वक्त
1: पड़ेगा।
0: नहीं। तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: की सहेली।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
2: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।

इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए, बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।

0: अच्छा ये बताइए, अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: नहीं पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर, वो बोलते ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बंद।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को ही घर वापस आऊंगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए फिर।
2: क्या

0: फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
1: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है।
0: कभी कभी कर जाता
1: अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा
1: जी
2: बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमेशा सुनता था।
1: क्या बात है।
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी ज़िंदगी में। इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे ज़िंदगी
1: क्या
2: में।
1: बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी
0: बहुत
1: विविध
0: बहुत।
1: भारती।
0: और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में,
1: हाँ
0: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे। मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच पर रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे हांकते रहता था और सुनता रहता था
1: वाह
0: वो
1: वाह।
0: दौर। लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब वो अब
1: हाँ
0: वापस नहीं
2: अरे
0: आएगा।
2: हाँ, सच सच बात, सच बात।
0: बहुत मज़ा आता था
1: तब
0: उस टाइम
1: जिंदगी में
0: पे,
1: एक सादगी थी
0: सच
1: और
0: में,
1: सब लोगों का साथ था।
0: सच में, सच
2: हाँ,
0: में,
2: और बहुत खुशी थी। बहुत
0: बहुत
2: हाँ,
0: खुशी थी।
2: अभी बाकी की सारी चीज़ें बहुत सारी हैं जिंदगी में, आशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन
1: हाँ
2: वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकिन गए।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अब ये हमारी चॉइस की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा, अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना, तो
1: ये
2: ऐसा
1: बड़ा
2: होता है कि
1: मुश्किल हो
2: यार
1: जाता है।
2: कौन सा, मेरे को
0: क्या
2: कौन सा
0: सुनाए,
2: पसंद
0: हाँ
2: है।
0: क्या
2: हाँ
0: सुनाए।
1: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
2: तुम अगर
1: मुझको
2: मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
1: एक बहुत
2: और
1: प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने तू,
2: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए।
1: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किस का जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना, हाँ। आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।
1: चंदन

0: वन
1: क्या बात, क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
2: गोदान राजकुमार।
1: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
2: वाह, सही बात, सही
1: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूं ठुमरी तू है ख्याल, मतलब कमाल है ना ये। देखिए राजेंद्र कृष्ण क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते हैं मुझे

0: क्या बात है।
1: मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है।
0: हाँ,
1: मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे।

0: गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूँ, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आर्ट के आर्टिस्ट शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से 2 घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज़ को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूँगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीज़न है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी,
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया जाए, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूँ और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया जा। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे ही मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ। एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना, वही मैं भी सोच रहा था
0: तब तक ये सोच।
1: उनको ये गाना है
0: ये, लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग जा

0: क्या बात है, देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो ख़त्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहाँ के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस कर रहे
0: हैं। क्या मजेदार बात है, मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल जो चल रही है वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल, और शायद यही वजह क्या अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना?
2: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
2: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन ये गाना हुआ या दोस्त दोस्त ना रहा या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना ज़बरदस्त है,
0: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी जी
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो जाने कहाँ गए वो दिन।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं कहां बताए दिल।

0: जाऊं कहां बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर
1: जी
2: मुकेश जी नहीं होते तो,
1: जी
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज़्यादा है,
1: आम जनता की बहुत चहेते
2: बहुत
1: गायक हैं।
2: चहेते गायक थे। यस यस
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, ये बात तो सही है मुख्तार भाई से, मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता, और गाने भले बहुत कम गाए हैं, और मैंने
2: हाँ
0: बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए डुएट्स सब ज़्यादा हिट्स उनके पास ही हैं, और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो, गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो
0: बच्चा
1: गुजरात के,
2: दामाद
1: है
2: के
1: ना।
2: दामाद है, यस
1: उनकी जो
2: बच्चे,
1: पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है
2: हाँ
1: ना, उनसे
2: हाँ
1: उनकी शादी हुई थी। और
2: यस
1: ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी।
2: यस बताइए
1: उन्होंने घर
2: यस
1: वालों की मर्जी के खिलाफ ये
2: खिलाफ
1: शादी की थी
2: जाके,
1: सरल वेन के
2: हाँ
1: साथ।
2: जी जी जी जी
0: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए
0: गुजराती
1: उन्होंने
0: गाने भी
2: और
0: बहुत
2: आज
0: सारे गाए।
2: इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन
0: और
2: है।
1: शादी का
2: हाँ
1: दिन है,
2: बिल्कुल,
1: क्या
2: ये
1: बात
2: भी
1: है।
2: बहुत दिलचस्प बात है, और शायद पर्पजली उन्होंने उसी दिन किया होगा,
1: हाँ मेरा ख्याल
2: फोर्टी
1: है शायद
2: सिक्स में,
1: कितनी
2: फोर्टी सिक्स में
1: हाँ, और तब उनकी उम्र थी 23 साल।
2: 23 साल, हाँ
1: कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के
1: तो फिर हम
2: गुजराती।
1: कुछ सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो
2: एक
1: गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है, नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, नजर ना

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में।
1: जी
0: बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहाँ
1: बिल्कुल
0: शोज भी उन्होंने काफी सारे
1: काफी
0: किए।
1: सारे किए।
0: कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कंपटीशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान
1: एग्जैक्टली
0: गायकों की अपनी अपनी जगह है।
1: एग्जैक्टली
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
2: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता
0: अरे बाबा, क्या बात है,
2: हूँ।
0: जरूर।

0: क्या बात है, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है,
1: गैप आ गया, हाँ।
0: और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में,
1: साथी
0: साथी की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है,
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, हुस्ने

0: क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है कई दशक के बाद। साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं
1: जी।
0: मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर
2: सावन

0: बर्फ बारिश का दूसरा गाना,
1: उषा खन्ना जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मैं कहने वाला था
0: इशारों में बात हो रही है सबक
3: बर

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो
1: हाँ, आना जाने मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं ट्रैफिक जैम है, तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई है। एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा,
1: सीधे स्टेज पर जाना पड़ा है।
0: तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकम्फर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली उसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाँफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चींचिया
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए,
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है, है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: आप कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: हजार लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते, कह रहे यार दो लाइन गा ही दो,
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो, लोग इतने वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद हाँ, देखने हाँ, के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे,
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ से कुछ कपड़े लेने के लिए हाँ। तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों घूम क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे, मैं मेरी वाइफ को इशारा किया देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो हाँ, अरे वाह मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लेंगे फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब आप
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: क्या करें, किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: जो संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूँ कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफ़ी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूँ कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज़ हैं, अगर ये पुराने गाने आपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुँह से सुन भी लिया हूँ कि बोलते हैं कि म्यूज़िक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है, और

0: आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो 2.5-3 घंटे का 4 घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये 3-4 घंटे हम उस एरा में चले जाते हैं, हम एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम ख़त्म हो जाती है। वो 3 घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का ज़माना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस ख़त्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फ़ोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
2: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या ज़बरदस्ती, या शायद वो चीज़ को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर ला के बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहाँ से मैं अपना ख़त्म करके जाएँ, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली इन्जॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज़ के साथ है, अगर वो दिल से इसको इन्जॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफ़ेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पर होगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
0: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देते हैं।
1: सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट
2: रखना चाहिए डेफिनेटली,
0: वो तो जरूरी।
2: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको एटलीस्ट वो पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
1: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना।
2: एग्जैक्टली।
1: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत की लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
2: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा ये पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ है, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ।

0: अब मैं आपको ऐसे फंसाने वाला हूँ जैसा किसी ने नहीं फंसाया होगा।
1: ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे।
2: कब से सोच रहा हूँ मैं।
0: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें। आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
1: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना। हाँ।

0: आयर हूँ।
1: लो भाई
0: एच,
1: गोविंद।
0: हाँ एच है। हाँ, हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के
1: ये
0: जिसके बाद

0: भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या
1: है
0: प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं, योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे
1: अच्छा?
0: सुनाई थी।
1: वाह,
0: बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए, मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल खे।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र भाई, आप दोनों ने वक्त निकाला मुकेश जी की याद के लिए, ये महफिल विविध भारती में सजाई, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आपका भी विविध भारती का भी, और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों को बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर, और बहुत दिल से हम सभी सुनने वालों का और आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
2: आप हाँ बिल्कुल, विविध भारती का और यूनुस भाई आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुकेश जी के गानों को और घर घरों में गुनगुनाया जाएगा और गाया जाएगा।
0: बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू।
0: ये था पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक विशेष कार्यक्रम। आज आपने इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी सुनी। इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे गायक मुख्तार शाह और उनके साथ गोविंद मिश्र। इन दोनों से बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हवाओं से कहा कि वो तुम्हारी याद का झोंका न लाए, लेकिन नहीं सुना हवाओं ने। बहती नदी से कहा तुम्हारे साथ का एहसास न दिलाए। चांद सितारों से कहा वो चांदनी बिखेरे रात भर, लेकिन कहा किसी ने न सुनी ये बात। हवाएं ले आई तुम्हारे याद की खुशबू, चांद सितारों ने सुनाई सिर्फ तुम्हारी कहानी, और फिर हमने भी दिल का कहा न माना और चल पड़े तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ निभाने।

ये जिंदगी भी अजीब है। जिंदगी कभी सवाल बन जाती है जिसका जवाब हम भी खोज नहीं पाते कभी। कभी ये मुस्कुराहटों की चादर ओढ़कर बैठी रहती है तो कभी खामोशियों में आंसू छिपा लेती है। जितना इसे समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ये नए नए मोड़ दिखा देती है। शायद जिंदगी का मकसद हर सवाल का जवाब देना नहीं बल्कि हर अनुभव से हमें थोड़ा और बेहतर इंसान बनाना है। इसीलिए कुछ सवालों को वक्त के हवाले कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। हम नहीं खोज पाते कुछ सवालों के जवाब।

ये दिल बड़ा अजीब है, ठगता है कभी कभी, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से रूठ जाता है, कभी खुशियों की पालकी पर सवार होकर उड़ जाता है आसमान में, तो कभी स्मृतियों की धूल में चुपचाप बिखर जाता है, कभी एक छोटी सी मुस्कान में पूरा आकाश समेट लेता है, कभी अनकहे शब्दों के बोझ तले निःशब्द हो जाता है, कभी भोर के ओस की पहली बूंद सा मुस्कुराने लगता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर प्यार करना नहीं भूलता।

0: छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी लेकर, लेकिन कुछ रिश्ते तकदीर की स्याही से लिखे होते हैं। उनसे बचने की हर कोशिश हमें उसी मोड़ पर ले आती है जहां दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। सोचा तो था नहीं करेंगे मोहब्बत, नहीं जाएंगे उम्मीदों की पालकी पर, लेकिन जब जिंदगी किसी खास शख्स से रूबरू कराती है तो इरादे पिघल जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और दिल अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है। तभी तो शायर ने कहा है, दिल पर मुश्किल बहुत है दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी लिखना।

कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है, फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, तुझे चाहा। शायद यही तो प्रेम की सबसे सच्ची और मासूम परिभाषा है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है। यही सच्ची प्रेम की परिभाषा है।

हमारे मन में स्मृतियों का सागर होता है, कुछ दर्द भरी स्मृतियाँ, कुछ खुशगवार। कुछ दर्द भरी स्मृतियों की लहरों से हमारा मन लहूलुहान भी होता है, कुछ दर्दीली स्मृतियाँ भी हमें सहलाती हैं कभी कभी। कुछ प्यारी स्मृतियाँ हमें इस तरह गुदगुदाती हैं कि हम खुद को भूलकर किसी की जादू भरी बातों में खो जाते हैं और हम गुनगुनाते हैं कुछ यूं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म कश्मीर की कली से SH बिहारी के लिखे गीत की धुन बनाई है ओपी नैयर ने, आवाज दे रहे मोहम्मद रफी और आशा भोसले।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।

जीना तेरी गली में। अब सुनिए इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के स्वर में। गीतकार रविंदर रावल, संगीतकार बाबुल बोस।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विने धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
2: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
4: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
2: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
5: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
2: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म का नाम धरती कहे पुकार के।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अभी आपने कारवां फिल्म में आशा भोसले और आरडी बर्मन को सुना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने हम आपको सुनवाएंगे 6:05 से। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए NHRC ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर को रईस फिल्म में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, संगीत जामेट का।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: अब सुनिए किशोर कुमार का गाया और अमित खन्ना का लिखा गीत, तर्ज बनाई है बप्पी लहरी ने फिल्म का नाम, दिल से मिले दिल।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश प्रेम रोग फिल्म से। गीतकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाजें सुधा मल्होत्रा और अनवर की।

0: प्रेम रोग के इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम आप सुनेंगे फिर से शाम 7 बजे। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 100.3 MHz पर थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 आज लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। विधेयक पर सदन में कल से चर्चा की शुरुआत की गई थी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है। चर्चा के दौरान हुए हंगामे के कारण सदन को दो बार स्थगित भी किया गया। इसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके पारित होने की घोषणा की।
1: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हार गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे हिसाब में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।
0: अब ये विधेयक ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के इस साल के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। लोकसभा में आज इस बारे में प्रस्ताव पेश किया गया। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से करीब 940 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बालिका सैनिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को टैबलेट दिए और बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस राज्य स्तरीय समारोह से मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की शुरुआत की।

0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को दिए गए संस्कार से ही उनका व्यक्तित्व बनता है। श्री शर्मा ने वीसी के जरिए प्रदेश के स्कूली बच्चों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।
1: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने प्रदेश में व्यापक अभियान चलाने और विश्वविद्यालयों की ओर से गोद लिए गांवों को नशा मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने लोकभवन से आज वीसी के जरिए विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं से बातचीत की। श्री बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों के आसपास मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान कर ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। राज्यपाल ने बताया कि नशाखोरी के खिलाफ 2 अगस्त से 100 सप्ताह का एक देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू होने जा रहा है। युवा कार्य और खेल मंत्रालय की ओर से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें हर रविवार को स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिताएं, पैदल मार्च, ध्यान सत्र, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रम होंगे। सतत विकास लक्ष्यों के तहत राज्य ने पोषण और पीने के पानी सहित कई क्षेत्रों में प्रगति की है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज एसडीजी के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को नीति आयोग और राज्य संकेतकों के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वास्तविक और प्रमाणिक नवीनतम आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक निर्धारित 17 एसडीजी और 248 संकेतकों पर राजस्थान को लगातार काम करना है। मुख्य सचिव ने दूरस्थ और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की भी बैठक ली। इसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए 196 करोड़ रुपए से अधिक के बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली वंदे भारत गुड्स ट्रेन का आज कोटा में ट्रायल किया गया। 16 कोच वाली इस सुपर फास्ट ट्रेन की रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कोटा नागदा सवाईमाधोपुर रेलखंड पर इसका परीक्षण किया गया। इसमें फायर डिटेक्शन, ऑटो लॉक, रेफ्रिजरेटर पार्सल सहित कई तरह की सुविधाएं शामिल है। अपनी उच्च ट्रैक गुणवत्ता और आधुनिक सिग्नलिंग तथा सुरक्षित हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण कोटा मंडल एक बार फिर रेल तकनीक की परीक्षण प्रयोगशाला साबित हुआ है। इस फ्रेट ईएमयू की सफल ट्रायल से माल परिवहन को आने वाले समय में तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धा और आस्था का माहौल है। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजनों, संतों, महंतों का अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। जयपुर में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व होने के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का भी अवसर देती है। वहीं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली जिले के बूसी और बालराई में संतों का सम्मान किया। इस मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में महाप्रसादी का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के साबला में संत मावजी महाराज की जन्म स्थली हरि मंदिर पर भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झुंझुनू के चंचलनाथ टेला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर टेला परिसर में आकर्षक सजावट की गई। सलुम्बर जिले के सभी डाकघरों में सावन के महीने में गंगा जल उपलब्ध करवाया जाएगा। शिव भक्तों की सुविधा के लिए ये पहल की गई है। इसके तहत श्रद्धालु 30 रुपए में गंगा जल की बोतल खरीद सकेंगे। मांग अधिक होने पर डाकिये घर घर गंगा जल पहुंचाएंगे। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज इको टूरिज्म वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस मौके पर देश के सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से विकसित इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इधर प्रदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जागरूकता संबंधी कार्यक्रम रखे गए। राज्य के अभयारण्यों में बाघों पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़ विषधारी के साथ ही एक नया टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली है। वन विभाग के अनुसार इन पांचों अभयारण्यों में बाघों की संख्या 150 है। इनमें बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इस साल सबसे ज़्यादा 28 शावकों का जन्म सरिस्का अभयारण्य में हुआ। हाईटेक मॉनिटरिंग और एंटी पोचिंग अभियान से बाघों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही वन विभाग वन्य जीव कॉरिडोर मजबूत करने पर भी खास ध्यान दे रहा है। रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा में ट्रांस लोकेशन से भी बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित हुआ। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई। देश भर में नशा मुक्ति के लिए 2 अगस्त से 100 सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का माहौल, गुरुजनों, संतों और महंतों का श्रद्धा से अभिनंदन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। सरहदी जिले बाड़मेर में आज गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। लीलसर स्थित जसनाथ धाम, चौहटन में डोंगरी पुरी जी के मठ, बाड़मेर के चंचल प्राग मठ और गंगा गिरी जी के मठ में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जिले में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गुरु वंदन के कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान गुरुजन का सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों पुनर्विकसित बाड़मेर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर बाड़मेर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं शहीदों की याद में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासन, सेना, वायुसेना, बीएसएफ और पुलिस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग

0: मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरात्रा स्थित वांकल माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री पटेल ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को इनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने कल धनाऊ इलाके में ओजिया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शिल्पकार खेताराम के घर पहुंचकर पारंपरिक पट्टू बुनाई कला का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पारंपरिक पट्टू बुनाई बाड़मेर की अनोखी पहचान है। इस कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रभावी ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और व्यापक प्रचार प्रसार पर बल दिया जाएगा। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प को GI टैग और ट्रेडमार्क दिलाने की दिशा में प्रयास करने और इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग तथा मार्गदर्शन का भरोसा दिलाया। पिछले दिनों ग्राम पंचायत विशाला में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विकसित भारत जीरामजी योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मरुस्थलीय जिले बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन की ओर से पौधरोपण किया गया। इस अभियान के तहत सरहदी गांव सरूपे का तला, मिये का तला और केलनोर समेत BSF की विभिन्न सीमा चौकियों और सरकारी स्कूलों में भी बड़े पैमाने पर पौधरोपण करते हुए आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। दूसरी तरफ जिले में मॉनसून की बारिश के चलते इन दिनों विद्यालयों में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जा रहा है और विद्यार्थियों को पौधे भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। वहीं मॉनसून की बारिश के मद्देनजर इन दिनों बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल जैसी खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है और किसानों तथा पशुपालकों में खुशी का माहौल है। बाड़मेर के सरकारी जिला अस्पताल में पिछले दिनों प्रसव सखी हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रवेश से लेकर डिस्चार्ज होने तक एक ही स्थान पर मार्गदर्शन, सहायता और समन्वित सेवाएं मुहैया कराना है। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पास भयो। प्रदेश री सरकारी स्कूलों रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया री रकम भेजी जी। देश में नशा मुक्ति सारू 2 अगस्त तू 100 सप्ताह रो खास अभियान चलायो जावेला और गुरु पूर्णिमा रा पावन पर्व रे मौके आस्था रो माहौल गुरुजना संता और महंता रो श्रद्धा भाव मान करीचियो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 ने आज लोकसभा पास कर तीनों। इन बिल में पेपर लीक रा दोषिया ने 10 साल ताइरी कैद और भारी जुर्माना रो प्रावधान करी चियो है। बिल माथा सदन में काल नो चर्चा करी जा रही ही। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कहो कि बिल में बदलाव कानून ने और करड़ो बनावण और तुरंत न्याय दिरावण सारू करी चियो है। चर्चा रे दौरान भया हंगामा रा कारण सदन री कार्रवाई 2 दफा टालनी पड़ी। ये पाछे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ओ बिल पास वेवन रो ऐलान करती नो।
2: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
3: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।
2: प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

0: अब वो बिल संसद रा ऊपरी सदन राज्यसभा में विचार सारू पेश करियो चावेला। एक राष्ट्र एक चुनाव जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी रो कार्यकाल संसद रा शीतकालीन सत्र रा आखिरी सप्ताह ताई बधा दियो चियो है। लोकसभा में आज इंबारा में प्रस्ताव पास करी चियो जिन्हें सदन ध्वनिमतों पास कीनो। ध्यान जोग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक रो मकसद लोकसभा राज्य विधानसभा में चुनाव एक साग करावन री व्यवस्था लागू करनो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर जिला रा खेड़ली गुर्जर गांव करीब 940 करोड़ रुपया रा खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। लड़कियां रे सैनिक स्कूल में राखी जा कार्यक्रम में श्री शर्मा सरकारी स्कूलों रा 40 लाख पात्र विद्यार्थियों रा बैंक खाता में स्कूल ड्रेस सारू 250 करोड़ रुपया भेजा। वह दिव्यांग बच्चा ने टैबलेट दीना और चोखा नतीजा देवन वाला अध्यापकों रो मान कीनो। इन जलसाओं मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो अभियान रा तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत कीनी। इस मौके वह कहो कि बच्चा ने दिया जावन वाला संस्कार ही मारो व्यक्तित्व बनावे है। श्री शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए प्रदेश रा स्कूली बच्चा सागे बातचीत कीनी। वह कहो कि राज्य सरकार स्कूलों में बेहतरीन बुनियादी ढांचो तैयार करावनो और हर बच्चा ने पढ़ाई लिखाई रो मौको मुहैया करावनो तय कीनो है।
1: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े नशा मुक्त भारत अभियान रातेत प्रदेश में आई असरदार कोशिशां करण मथ जोर तीनो है। श्री बागड़े आज लोकभवन वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए विश्वविद्यालय रा कुल गुरुआ सागे बातचीत कर रहा है। वे राज्य में मोटा पैमाना माथे अभियान चलार विश्वविद्यालय काने गोद लिया जा गाँव में नशारी लत जड़ खत्म करण सारू ठोस जतन करण रा हुकम तीना। राज्यपाल कहो कि विश्वविद्यालय रे आरएसआर नशीली चीजा बेचण वाला ने पकड़वा सारू अभियान चलायो चाहणु चाहिए। वे बतायो कि नशाखोरी रे खिलाफ आखा देश में 2 अगस्त 100 सप्ताह रो जन भागीदारी अभियान चलायो चावेला। युवा कार्य और खेल मंत्रालय रे ओर नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान चलायो चावेला। इनमाय हर दीतवार ने जीवन रा स्वस्थ तरीका ने बधावो देवन सारू खेलना री होड़ा पैदल मार्च ध्यान सत्र और नुक्कड़ नाचक समेत भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या चावेला। लगातार विकास रा लक्ष्य रा तहत राज्य में पोषण और पीवन रा पानी समेत कई हल्का माय प्रगति भी है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज SDG री राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और निगरानी समिति री मीटिंग लीनी। वह न्यारा न्यारा महकमा ने नीति आयोग और राज्य संकेतकों रे मुजब काम करण रा हुकम दीना। मुख्य सचिव असली और प्रामाणिक आंकड़ा पोर्टल माथे अपलोड करण बाबत कहो। वह दूरस्थ और जनजातीय बहुल हलका रा विकास सारू बनाई ची राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति री मीटिंग ही लीनी। इनमाय चालू माली साल सारू 196 करोड़ रुपयों बत्ती रकम रा बजट प्रस्ताव मंजूर करी चिया। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। देश री पहली वंदे भारत मालगाड़ी री आज कोटा माय कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड माथे परख करी ची। इस दौरान 16 डिब्बा वाली इन सुपरफास्ट रेल री रफ्तार करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा नापी ची। इनमाय लाई लागण रीठा करण दरूजा आपू आप बंद वेवण और रेफ्रिजरेटेड पार्सल समेत कई भांतरा सुविधा मुहैया कराई चिया है। इ फ्रेट ई

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। नफरत

0: लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत स्वर गीत और संगीत कैलाश खैर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। पराया धन, अब आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए अब अभिजीत और अलका याग्निक को सुनिए यस बॉस फिल्म में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आए हाय
2: लीजिए, सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को जख्मी फिल्म में गौहर कानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

0: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देवदर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देवदर्शन धूप।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: एक नई खुशी।
1: JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए विनोद राठौर और अलका याग्निक को फिल्म जीत में। बोल लिखे हैं समीर ने।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
3: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
4: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है, लोग करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
3: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आए हाय।
6: और ये है जयमाला कार्यक्रम की अंतिम पेशकश नीति मोहन और रैप सोफिया अशरफ की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने। फिल्म का नाम है जब तक है जान।

0: एक नई खुशी। JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: ये विविध भारती है। इंद्रधनुष के अंतर्गत लीजिए सुनिए कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग खमाज से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी, आवाज दे रही हैं लता मंगेशकर।
1: ओ, सजना।

अभी आपने राग खमाज पर आधारित गीत सुना, फिल्म थी परख, आवाज थी लता मंगेशकर की। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भीम पलासी पर आधारित गीत अनारकली फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र।

ये था राग भीम पलासी पर आधारित अनारकली फिल्म का गीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उपहार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और ये गीत है राग भैरवी, क्षमा कीजिएगा, राग बैरागी भैरव पर आधारित।

इस समय आप सुन रहे हैं अनारकली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्र। ये गीत राग भीम पलासी पर आधारित है।

अभी आपने राग भीमपलासी पर आधारित गीत सुना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए राग नंद पर आधारित गीत, फिल्म है मेरा साया। आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार मदन मोहन।

अभी आपने राग नंद पर आधारित गीत सुना, फिल्म थी मेरा साया। इस गीत के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए सतीश भार्गव की लिखी झलकी, चलो शुरू हो जाओ।
1: बॉलर्स गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद को बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया, खेल भर दिया सामने की तरफ बैक टू द
2: बाबूजी। बाबूजी मेरी फाइल निकाल दीजिए। बाबूजी मैं बहुत दूर से आया हूँ।
3: अरे बैठो, ठहरो, थोड़ा रुको। वाह क्या बात है, अरे मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, थोड़ी आवाज तो बढ़ा यार।
2: बाबूजी आप 3 दिन से रेडियो सुन रहे हो
3: तो तू चाहता क्या है, क्या काम ही काम करें? अरे देख नहीं रहा मैच कितना जोरों पे चल रहा है? वाह क्या बात है यार, मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, आवाज बढ़ाना यार।
2: मेरी फाइल का क्या होगा, रोज ऑटो से आता हूँ, किराया भी खराब होता है और समय भी खराब होता है।
3: तो मैं क्या करूं, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारी फाइल भी देख लूंगा। अब एक काम करो, तुम 15 दिन बाद आना।
2: अच्छा तो बाबूजी 15 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊं, मेरा काम हो जाएगा?
3: हाँ हो जाएगा।
4: ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल के सीधी कर दे सबकी चाल, कैया गंगा किनारे
5: भैया प्रकाश। प्रकाश भाई क्या बात है, पान वान खूब खाए जा रहे हैं?
4: लो भैया शर्मा जी छुट्टी पर चले गए।
5: अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो भाई मजे ही मजे हैं।
6: अरे वाह भाई, मुझे तो 50 रुपए निकलवाने बैंक जाना है, मैं तो कल देर से आऊंगी।
4: भैया तो अपन कौन से जल्दी आने वाले हैं, अपनी तो वैसे ही 9 बजे खुलती है।
5: भैया बड़ा परेशान किया था शर्मा जी ने, जब देखो एक ही रट, काम करो काम करो, ऑफिस में ठहरना भी यार मुश्किल कर देते थे। इसीलिए तो अपने शंकर जी न मीटिंग में आते हैं और न काम ही करते हैं।
6: अरे उनका ही क्या, अपने यहाँ तो कितनी महिलाएं या तो देर से आती हैं और अगर आ भी गईं तो बस उनके मुंह से हमेशा सुन लो।
5: क्या सुन ले बताओ तो?
6: यही कि मुन्ने के टेस्ट चल रहे हैं। अरे साहब को क्या हुआ मालूम है, अचानक चक्री की तरह नाचने लगे।
5: चक्री की तरह नाचने लगे?
6: हाँ।
5: अरे पी रखी होगी इसीलिए तो चक्री की तरह नाच रहा होगा गंजा।
4: भाई हमारे शंकर की कैसी अच्छी कट रही है, ऐश कर रहा है।
6: अरे मैंने तो एक दफा उन्हें ये शेर पढ़ते सुना था।
5: शेर पढ़ते? हाँ। कौन सा?
6: चलो सुना? सुनो। कहो आंधियों से आए,
4: वाह वाह वाह,
6: कहो बर्क से जला दे,
4: वाह वाह वाह वाह।
6: अरे आगे तो सुनिए, ये रहा मेरा नशे मन, कोई आंख तो उठा दे।
5: वाह वाह वाह वाह भाई,
4: बहुत
5: भाई। प्रकाश,
4: रमेश जी,
5: यार तुम भी तो कुछ सुनाते हो। हाँ,
4: इन्होंने शेर सुना है, मैं आपको चीता सुना दूं?
5: हाँ चीता, चीता बिल्ली कुत्ता कुछ सुनाओ यार।
4: चलिए।
5: हाँ।
4: एक दिन बैठे बैठे ऐसी तबीयत चली,
6: अरे वाह,
4: क्यों न अब की बार साइकिल से चले दिल्ली।
5: वाह।
4: ब्रेक तब कसा लिए, हवा भी ठीक देख ली, कहते हुए हम ये चले हनुमान कर भली।
5: वाह वाह वाह।
4: आई तब बुरी घड़ी,
6: अरे
4: दृष्टि शनि की पड़ी, दूर भी गए न थे कि साइकिल से बस लड़ी।
6: अच्छा।
4: और हम बेजान से मेड इन जापान से हॉस्पिटल में नर्स का सिंगार देखते रहे, मर गया मरीज हम बुखार देखते।
5: वाह भैया वाह वाह वाह। भाई प्रकाश सुना है कि गंजे ने किसी मंत्री के क्लर्क को पटा रखा है, इसीलिए ऐश कर रहा है।
6: अरे हाँ मगर किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कहने की।
5: हाँ,
4: और इधर शंकर का कहना है कि भैया नौकरी से पहले उन्होंने इतने पापड़ बेले हैं कि बता नहीं सकते, अब तो आराम करेंगे ही।
6: हाँ सही है, मगर वो शर्मा जी सबको खींचते रहते लेकिन शंकर जी से कहने की कुछ हिम्मत नहीं करते।
5: अरे वो तो

0: नईम भाई को ले लो, उनकी बीवी भी इसी ऑफिस में है, खाली इसीलिए दफ्तर आ जाते हैं, नहीं तो उनका कहना है कि आज तक मैंने 35 साल काट दिए और
1: हाँ
0: मुश्किल से कभी ऑफिस आ जाता हूँ, वो भी
1: हाँ
0: बीबी को
1: हाँ
0: लेने।
1: भैया नौकरी तो होती ही है मौज मस्ती के लिए। अरे अपना जो कैंटीन का कुक है ना,
2: हाँ
1: पहले वो एक होटल में काम करता था।
2: अच्छा
1: बेचारा सवेरे 7 बजे से भजिए तलना शुरू करता था और रात के 11 बजे तक भजिए कचौरी और दूसरे सारे काम किया करता था। मैंने खुद देखा है उसे कि पसीने पसीने हो जाता था बेचारा। जब लेकिन सरकारी कैंटीन में जगह निकली तो उसने अपनी एप्लीकेशन दी। मालूम है क्या लिखा था?
2: बताइए बताइए क्या लिखा।
1: उसने लिखा था कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, मैं बहुत ईमानदारी तथा लगन के साथ काम करूंगा।
0: तो फिर क्या हुआ?
1: बस नौकरी पर रख लिया, उसी दिन से उसके भाव जो थे वो ऐसे बदले कि बिल्कुल ही बदल गए।
2: अरे भाई भाव बदल गए, वो कैसे?
1: अरे अब तो वो अपनी शर्त लगाता है कि
2: अच्छा
1: देखो भाई, मैं 1 किलो गुलाब जामुन से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 30 आलू बड़े, 30 समोसे और 2 किलो भजिया,
2: अच्छा
1: चाहे तो कैंटीन का मैनुअल उठा के देख लो,
2: ओ
1: इससे ज्यादा
2: हाँ
1: काम करने के लिए नहीं लिखा है उसमें।
2: अच्छा। हेलो एवरीबॉडी।
3: हेलो रमना जी।
1: अरे भाई आपने तो आज बहुत ही देर कर दिया आने में।
2: हाँ रमेश, अब वो क्या बताऊं, वो रात को बहुत पुरानी पिक्चर आ रही थी तो उसे देखने के लिए जागती रही और सुबह फिर देर से उठी, बस इसीलिए आज देर हो गई। फिर सोचा कि आज शर्मा जी भी तो नहीं है।
0: हाँ भाई, शर्मा जी के रहते तो बड़ा ही मुश्किल होता है।
2: हाँ अब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती, अपनी तो भाई आदत है।
1: हाँ, कैसी आदत?
2: हाँ, यही कि देर से आना है तो आना है, जो
4: अच्छा।
2: करो सो कर लो। खैर अब मैं तो अपनी सीट पे जा रही हूँ।
1: हाँ सीट पे जा रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा काम
2: हाँ
1: है
2: भाई
1: सीट
2: हाँ।
1: पे।
2: नहीं जी, अब सोच रही हूँ कि जाड़े तो चल ही रहे हैं और मुन्ने का स्वेटर पूरा नहीं हुआ है तो उसे पूरा कर लूँ।
0: ये तो अच्छी बात है।
2: और फिर शर्मा जी के रहते हुए तो तुम्हें मालूम ही है, बड़े छुप छुप के बुनना पड़ता है। अच्छा तुम लोगों में से कोई बताएगा अभी कितने दिन तक छुट्टी पे है शर्मा जी?
4: अरे हाँ हाँ जहाँ तक मुझे मालूम है 15 दिन की छुट्टी।
2: इतने दिन में तो मैं 2 स्वेटर बुन लूंगी। अरे इसी खुशी में चलो मैं तुम सबको चाय पिलाती
4: हूँ।
2: चलो,
4: चलो, चलो,
2: चलो चलो चलो चलो। लल्लू, ओ भैया लल्लू।
0: किसे बुला रही हो? सीनियर चपरासी तो पान की दुकान पर है और जूनियर चपरासियों को जाते आते काम समझा गए, मगर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं है।
2: अजी तनख्वाह के दिन तो बहुत से चपरासी दिखाई देते हैं,
1: हाँ।
2: मगर बाकी दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे ही दफ्तर 2-3 चपरासियों के सहारे ही चलता है।
1: भैया छुट्टी का अधिकार सबका है। एक बाबूजी को मैं जानता हूँ जो साल में 50 CL लेते हैं।
2: 50 CL?
4: अरे,
1: हाँ।
4: अरे वो कैसे?
1: अरे भाई बहुत आसान है, जब दफ्तर ना आना हुआ तो घर से फोन कर दिया, बीमार हूं नहीं आ सकता, फिर 2-4 दिनों में आकर ज्वाइन कर लिया।
2: तो कोई पूछता नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं मांगता।
1: अरे भाई एप्लीकेशन मांगने वाले ने ही तो उन्हें ये तरकीब बताई है, फोन करो घर बैठे और बाद में आओ और दस्तखत कर दो।
2: वाह भाई वाह, मान गए। क्या क्या तरकीबें बनाई हैं लोगों ने।
0: ओहो लंच हो गया, आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलो भाई चलो लंच कर लेते हैं।
1: अरे लंच पे तो चलेंगे यार, प्रकाश एक सलाह लेनी थी आपसे।
0: हाँ, बोलो क्या बात है।
1: बात यह है भैया कि एक मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ।
2: स्कूल?
1: हाँ।
2: वाह।
1: उसका कोई अंग्रेजी नाम तो बताओ।
0: अरे कोई भी अंग्रेजी नाम रख दो, जैसे मिनी कॉन्वेंट, शॉर्ट कॉन्वेंट, लॉन्ग कॉन्वेंट, ना चलेगा?
2: मॉरल कॉन्वेंट।
0: हाँ बिल्कुल। मगर यार तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएगा कौन?
1: स्कूल में पढ़ाएगा कौन? अजी हम पढ़ाएंगे और मेरा बेटा पढ़ाएगा।
0: मगर तुम तो सर्विस में हो ना?
1: सर्विस में है तो क्या है, अभी बस स्कूल की एक शिफ्ट लगाऊंगा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा।
0: मगर तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो और तुम्हारा

0: अरे अरे, अभी अभी आए थे और अभी अभी चले। अरे
1: बेटा ये नौकरी है, इसे मेरी तरह से करोगे तो ऐश करोगे।
0: हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहते हो।
1: अरे यार प्रकाश, एक किस्सा याद आ गया।
0: क्या वही कि नौकरी कैसे करते
1: नहीं
0: हैं?
1: नहीं एक दूसरा किस्सा
0: चलो ठीक है, यह भी सुना दीजिए।
1: भैया। एक बार मैं अपने गांव गया था, वहां मुझे वर्मा जी मिल गए। बोले, भाईजान क्या आप भोपाल जा रहे हैं?
0: फिर
1: वहां दफ्तर में जाकर बता देना कि मैं अभी 2-4 दिन और दफ्तर नहीं आ पाऊंगा।
0: तुमने ले जाकर दरखास्त दे दी होगी।
1: नहीं यार, मैं वर्मा जी के दफ्तर गया तो वहां कुर्सी पर एक पुराना कोट वर्मा जी का टंगा हुआ था। मैंने पड़ोस वाले से बस इतना कहा, वर्मा जी, बस इतना ही कहा था कि वो सज्जन बोले, अजी साहब वर्मा जी यही थे, अभी उठकर चले गए होंगे। ये देखिए ना, उनका कोट टंगा है, आते ही
0: वाह भाई वाह।
1: होंगे। फिर क्या, मैंने उन्हें बताया कि भैया वर्मा जी ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि 2-4 दिन और नहीं आएंगे, उनका कोट ऐसे ही संभाल कर टंगे रहने देना। और तो और भैया, और सुनो, जब मैंने वर्मा जी की टेबल पर देखा तो एक तरफ लिखा था, हिंदी में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए, और दूसरी तरफ उनके हाथों का लिखा हुआ था, ऑफिस में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए।

तो ये थी झलकी, चलो शुरू हो जाओ। लेखक सतीश भार्गव, निर्देशन किया अजीमुद्दीन ने। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनिधि चौहान और के गाए गीत से, बोल इरशाद कामिल के संगीत प्रीतम का, फिल्म का नाम खट्टा मीठा।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारी।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
6: अमित त्रिवेदी के संगीत निर्देशन में अब सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। आवाजें मोहन कानन और अमिताभ भट्टाचार्य की फिल्म का नाम लुटेरा।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए लियोन डिसूजा और सुजैन डीमेलो की आवाज में एक दीवाना था फिल्म का गीत, बोल जावेद अख्तर और ब्लेज के संगीत ए आर रहमान का।

निशांत खान के संगीत निर्देशन में अब सुनिए स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, आवाज जावेद अली की, फिल्म का नाम ये साली जिंदगी।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अलीशा मेंडोंसा और मोहित चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
5: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
6: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
7: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है, डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
8: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं तलत महमूद के गाए गीत से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों।

0: रात भर तुम तो दिल के तार छेड़ कर।
1: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की फिल्म का नाम हकीकत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: लीजिए अब मोहम्मद रफी को सुनिए फिल्म राजकुमार में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। रंग

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म जिद्दी में। हसरत जयपुरी के बोल है और संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने।

अभी आपने जिद्दी फिल्में लता मंगेशकर को सुना और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में साथ दे रही लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है हंसते जख्म। कैफी आसमी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: JDL आए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

अभी आपने मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में सुना। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। अब दीजिए इजाजत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।
1: मालिक,

सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके

0: आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
1: प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा

0: अधीना यहाँ। सुनो मिस्टर सुनो बंधु, यह बॉम्बे मेरी जान।
1: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग हंसते थे।

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

कलाकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: हमारे तोप का गोला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय।
1: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरुदत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
2: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे।

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमती फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
2: दुखता उगता नहीं, कस मसाए है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगत है, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
3: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आवे तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे?
1: इधर घूमो करवट,
2: फल नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
4: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
5: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
4: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
5: छोकरी? तुम्हारा टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
4: यस।
5: ओह गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कह को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता?
4: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम कह को उसका बात करता है। डोंट फॉरगेट, तुम हमारा पेइंग गेस्ट है।
6: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
3: जाएगा। राइट राइट।
4: मिस सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
6: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
5: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
4: यू शट अप। सुजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला?
5: मैं बोला कि तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है, साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
7: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी। हम तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे। माइंड यू जाएगी आजादी।
0: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
8: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखे तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

पहाड़ कभी एक दिन में नहीं दरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कहीं ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कहीं ही नहीं गई होती।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहां प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस, वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।

जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहाँ गया।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको

FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11 बजने वाले हैं। ये समाचारों का समय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.3 MHz पर आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।